हम तो धीरे नहीं बोल सकते ना, अगर हम धीरे बोलेंगे तो आप ही नहीं सुनेंगे, फिर आप कहेंगे आपका मैसेज तो शामिल ही नहीं किया गया है। तो इसलिए मैं जोर से बोलती हूँ कि जिन्होंने इस गाने की फरमाइश की थी उनके नाम है सुधाकर राजे, डॉक्टर प्रशांत राजे, जगुताई कुमार, संचित प्रथमेश, हर्षिता सानवी, प्रणाली देशमुख और सर्वत। आप सभी की पसंद पर ये गाना हम सब ने सुना। और अब एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं वापस आती हूँ। आप सुन रहे हैं दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आपकी फरमाइशें पहुंचाने का जरिया है FM Gold AIR Delhi @gmail.com, यानी ये ईमेल आईडी।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

फहीम शालवाफ की पसंद का ये गीत आपने अभी सुना और अब आपको बता दें कि अगला गाना जो आने वाला है वो है रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश और प्रितेश की पसंद का गाना। तो चलिए हम सभी इंजॉय

चलते चलते अब वक्त हो गया है कि आखिरी गाना सुनवा दिया जाए, और ये गाना काफी पुराना है और जिन्होंने पसंद किया है उनके नाम बता देती हूँ। राजेश कुलकर्णी गौरी राघव की पसंद का गाना है, संगीतकार विनोद के संगीत से सजा हुआ सबसे मशहूर गाना है ये। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, आप ये गाना सुनिए और नीतू को इजाजत दीजिए, मैं आपसे मिलती हूँ तस्वीर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास तथा स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमे के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार के पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मौजूदा वित्त वर्ष में बनाए गए 2,35,000 आवासों के लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित करेंगे। श्री चौहान पटना के बामिटी में कृषि जनकल्याण संवाद में भी भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेकर स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों की तस्करी और नेटवर्क से निपटने के लिए मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान बल के गठन को मंजूरी दे दी है। दुर्गापुर, मालदा, खड़गपुर और नादिया में इसके लिए 4 पुलिस स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने इस पहल के लिए 591 नए पदों को मंजूरी दी है। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल

0: नेपाल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक जातीय संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए थे, लेकिन वो विफल रहा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। एंटिका सिंगापुर इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन में मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी वॉकओवर मिलने के बाद मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब उनका मुकाबला सिंगापुर की जोड़ी से होगा। इससे पहले भाई बहन की इस भारतीय जोड़ी को पहले दौर में बाई मिली थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. The 31st meeting of the Southern Zonal Council, chaired by the Union Home Minister Amit Shah, is underway in Kovalam near Chennai. Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay, Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar, Kerala Chief Minister Satheeshan, Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu, Telangana's Deputy Chief Minister and Lieutenant Governor of Puducherry are participating in the conference. Discussions will be held on various key issues, including interstate cooperation, economic growth, industrial investments, strengthening partnerships, infrastructure development, water resource sharing, education, healthcare, information technology, disaster management, crime prevention and border disputes. The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: Five major decisions have been taken. The first 4 projects are related to the railways, while the 5th is a highway project. The first 4 railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main railway route and the quadrupling of the Cuttack-Paradeep railway line. The 5th project is the construction of a 4-lane highway from Muzaffarpur via Sitamadi to Sonbarsa. These projects, with a total cost of 13,041 crore rupees, were approved by the cabinet.
3: Total 13,041 crore rupees ke projects cabinet ne approve kiye.
1: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman today met Singapore Prime Minister Lawrence Wong in Singapore. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Minister of State for Electronics and Information Technology Jitin Prasad were also present during the meeting. In a social media post, the Finance Ministry said the leaders reviewed the progress in implementing the roadmap for the comprehensive strategic partnership and discussed ways to further strengthen bilateral cooperation in areas including economic cooperation, digitalization, connectivity, skills development and sustainability. Defense Minister of Japan, Shinjiro Koizumi, who is on his maiden visit to India, visited the Western Naval Command in Mumbai yesterday. He held discussions with the Chief of the Naval Staff, Admiral Krishna Swaminathan, and Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command, Vice Admiral Sanjay Vatsyan. Mr. Koizumi was briefed on the roles, responsibilities and operational capabilities of the Indian Navy. He also inspected the Guard of Honour, laid a wreath at Gaurav's Thump and visited the indigenous warship INS Chennai. Later, he will hold bilateral meeting with Defence Minister Rajnath Singh. The meeting is expected to further strengthen bilateral

प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में तब दिखती है जब हर तरफ फूलों की बहार हो। और अगर आपको भी फूल पसंद है तो आज का तस्वीर आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पूर्वोत्तर की फूलों की घाटी के नाम से मशहूर उस जगह की, जो कि झरनों, हरी भरी पहाड़ियों, घुमावदार रास्तों और बादलों से ढके खूबसूरत नजारों के लिए प्रसिद्ध है। ये है नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित ज़ुकोव घाटी, जो उत्तर पूर्व भारत की उन खूबसूरत जगहों में से एक है जहां पर प्रकृति अपने सबसे शांत और मनमोहक रूप में दिखाई देती है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये, मैं हूं नीतू आपके साथ और ये है तस्वीर।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

गिरा दें, क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आ

हम आ गए हैं जुको घाटी, जो कि समुद्र तल से लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी खास पहचान है यहाँ मिलने वाला जुको लिली फूल, जो इस इलाके की विशेष वनस्पति मानी जाती है। मानसून के बाद जब पूरी घाटी हरियाली से भर जाती है और जगह जगह रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं, तब इसकी सुंदरता एकदम अलग देखते ही बनती है। फूलों, पक्षियों और तितलियों की दुर्लभ प्रजातियां आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। घाटी से गुजरती जुको और जुले नदी की छोटी छोटी जो धाराएं हैं और चारों तरफ फैले घास के मैदान, मतलब इसे एक पूरी तरह से अनोखा कुदरती रूप दे देते हैं। और वो कुदरत ना आपकी आंखों को ऐसी भाती है कि बस दिल ही नहीं करता वहां से हटने का।

जुको घाटी भी ऐसी ही है, भीड़ भाड़ से दूर है, इसीलिए प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लेकिन इस स्वर्ग तक पहुंचने के लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा, जो कि विश्वेमा और जखामा गांव से शुरू होता है। इस ट्रैक में खड़ी चढ़ाई है, पथरीला इलाका है, जंगल और ऊंचाई वाले क्षेत्रों से आपको होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन कठिनाई के बावजूद रास्ते में आपको मिलते हैं शानदार व्यूज और शांत वातावरण, जो आपको सिर्फ कुदरत से नहीं बल्कि खुद अपने आप से जोड़ता है। तो ऐसी ही जगह की बातें आज हो रही हैं, जो कि है जुको घाटी। तस्वीर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

0: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: पतंग उड़ाए खुशियां मनाए पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
2: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

ये है तस्वीर जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर नीतू के साथ। और आज तस्वीर में हम बात कर रहे हैं जुको वैली की, जो कि ट्रैक एडवेंचर और नेचुरल ब्यूटी का मिक्स है, जो नए और अनुभवी दोनों तरह के ट्रैकर्स को अट्रैक्ट करता है। चाहे आप इसके साफ सुथरे घास के मैदानों को देखें, हरे भरे पेड़ पौधों

शानदार पैनोरेमिक नजारों से मोहित हो जाएं। ये ट्रैक जो है एक यादगार एक्सपीरियंस होने वाला है अगर आप जाते हैं तो। पहली बार जा रहे हैं ना तो याद रखिएगा गाइड को साथ में रखना एक अच्छा विकल्प रहेगा। सामान जितना कम रखें उतना अच्छा, लेकिन सही रखें, जैसे कि गर्म कपड़े, रेनकोट, पानी, चाय, कॉफी, स्नैक्स और फर्स्ट एड किट वगैरह, तभी ये सफर ना एहसास फुर्सत वाला सफर होगा।

घाटी नागालैंड की समृद्ध संस्कृति और स्थानीय जीवन को समझने का भी अवसर देती है। आसपास के गांवों में रहने वाले नागा समुदाय अपनी परंपराओं, रंगीन त्योहारों और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। यहां की यात्रा के दौरान आपको स्थानीय जीवन शैली को करीब से देखने और नागा संस्कृति की विविधता को महसूस करने का मौका मिलेगा। साथ ही यहां का स्थानीय भोजन तो है ही, जिसमें नॉनवेज के साथ साथ बांस की कोपनों से बने व्यंजन भी शामिल हैं।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ ये है तस्वीर। और आज हम बातें कर रहे हैं जुको घाटी की, जिसे घूमने का सबसे अच्छा समय माना जाता है अक्टूबर से मई के बीच में। अब अक्टूबर से नवंबर तक जो है वो मौसम सुहाना रहता है और सर्दियों में आसमान साफ भी रहता है, इस कारण जो पहाड़ों के सीन्स हैं वो आपको साफ साफ दिखाई देंगे। लेकिन दिसंबर में होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। इस दौरान जुको घाटी जो घूमने का एक अनुभव है वो बेहतरीन अनुभव रहेगा। आप अगर नागालैंड की संस्कृति और परंपराओं में रुचि रखते हैं तो फिर आपको इसी फेस्टिवल के दौरान जाना चाहिए। इस दौरान आपको यहाँ नागालैंड के अलग अलग तरह के जो लोक नृत्य हैं वो और लोकगीत, खान पान, उन सब की ना एक अलग अनोखी सी झलक देखने को मिलेगी। जुको घाटी पहुंचने के लिए सबसे पहले नागालैंड की राजधानी कोहिमा पहुंचना होगा और कोहिमा से विश्वेमा या जखामा गांव तक सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। वहां से ट्रैक शुरू होता है और जो निकटतम हवाई अड्डा है और रेलवे स्टेशन वो दीमा

आने का तो पता नहीं है, लेकिन अब जाने का समय हो रहा है. और जाते जाते ना बस इतना ही कहना है कि जब हम किसी जगह जाते हैं और हमें वो जगह खूबसूरत लगती है, तो उस जगह की खूबसूरती को वाकई बनाए रखना ना, उसी तरह से बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी हो जाती है. और ये जिम्मेदारी निभाना हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए हमारे लिए वो खूबसूरत है, लेकिन अगर हम उसे गंदा करके वापस लौट आए तो दूसरों के लिए वो खूबसूरत नहीं रहेगी और वो कहेंगे कि ये क्या कैसी जगह थी. लेकिन वो किया तो हमारा किया धरा है ना. हम अपने घर को भी साफ रखते हैं तो जहां जाते हैं उस जगह को भी साफ रखना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. और मुझे लगता है हम सब यही मानते हैं, बस करते हुए थोड़ा सा ना हिचक जाते हैं, थोड़ा सा झिझक जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए. तो चलिए इसी ज्ञान की बात के साथ मैं आपसे इजाजत लेती हूं. तस्वीर का समय यहीं पर समाप्त होता है. नीतू आपसे मिलती है फिर कभी इसी चैनल पर, जिसे हम कहते हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरो कोइजुमी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा और रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार करेंगे। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने और मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। जापान के रक्षा मंत्री ने कल मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। श्री कोइजुमी ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन के साथ बातचीत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। गृहमंत्री अमित शाह चेन्नई के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में अंतर्राज्यीय सहयोग, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश, साझेदारी को मजबूत करना, अवसंरचना विकास, जल संसाधन बंटवारा,

0: शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, अपराध रोकथाम और सीमा विवाद जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। सीआईएसएफ ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। उनके सामान की विस्तृत जांच के दौरान उनसे कुल 68,53,000 रुपए बरामद हुए। सीआईएसएफ ने बताया कि यात्रियों नकदी और संबंधित यात्रा दस्तावेजों को कार्रवाई के लिए आयकर अधिकारियों को सौंप दिया गया है। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के भीतर स्थित सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर लंबी दूरी के हमलों को तेज कर दिया है। एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टर्डम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। एंटिका सिंगापुर इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन में मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी वॉकओवर मिलने के बाद मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब उनका मुकाबला सिंगापुर की जोड़ी से होगा। इससे पहले भाई बहन की भारतीय जोड़ी को पहले दौर में बाय मिली थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The India-Japan Defense Ministers meeting is currently underway in New Delhi. Defense Minister Rajnath Singh and his Japanese counterpart, Shinjiro Koizumi, are co-chairing the meeting. The meeting is expected to further strengthen bilateral defense relations, enhance strategic trust and cooperation, promote stability and security in the Indo-Pacific region, and identify new areas of collaboration. The two ministers will exchange views on deeper maritime security cooperation and closer defense equipment and technology collaboration under the Make in India framework following Japan's revision of the three principles on transfer of defense equipment and technology. The meeting provides an opportunity to build a roadmap for further advancing bilateral defense and security cooperation. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman today met Singapore Prime Minister Lawrence Wong in Singapore. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Minister of State for Electronics and Information Technology Jitin Prasada were also present during the meeting. In a social media post, the Finance Ministry said the leaders reviewed the progress in implementing the roadmap for the comprehensive strategic partnership and discussed ways to further strengthen bilateral cooperation in areas including economic cooperation, digitalization, connectivity, skill development and sustainability. The ministers are on a visit to Singapore to participate in the fourth round of the India-Singapore Ministerial Roundtable to be held today. India has delivered medicines and medical consumables to a government hospital in Kabul, reaffirming its long-standing health partnership with the people of Afghanistan. The Ministry of External Affairs said in a social media post that the assistance reflects India's continued commitment to supporting the healthcare needs of the friendly people of Afghanistan. The medical supplies are aimed at augmenting healthcare services at the government hospital in Kabul. India has called for urgent reforms in the United Nations Security Council, UNSC, saying its structure and decision-making process must reflect present-day global realities and provide greater representation to developing countries. Speaking at a UNSC open debate on working methods, India's Charge d'Affaires to the UN, Yojana Patel, said the need for reform is more pronounced and pressing than ever before. She noted that the UN's membership has increased significantly.

0: 당근.
1: कार्यक्रम घर आंगन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी प्रतिभा का और
2: रश्मि कुकरेती का प्यार भरा
1: नमस्कार। और श्रोताओं, आप सभी हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। रश्मि जी, देखिए, ये कार्यक्रम आवाज का है, जहां आवाज के जरिए हमारी मुलाकात होती है हमारे श्रोताओं से और संवाद होते हैं, है ना, जहां होती हैं ढेर सारी बातें, होती हैं ढेर सारी जानकारियां और गीत संगीत भी।
2: जी प्रतिभा, घर आंगन तो वो कड़ी है जो हमें और आपको एक दूसरे से जोड़ती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे पूछते हैं एक प्रश्न, लेकिन उस प्रश्न से पहले प्रतिभा, हम अपने सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं रेडियो श्रोता दिवस की।
1: जी
2: जगह जगह मनाया जा रहा है आज के दिन 20 अगस्त, और जो रेडियो के श्रोता क्लब जो बनाते हैं वो आज का दिन बड़ी बड़ी उल्लास के साथ, बड़ी जिसे कहते हैं तैयारियों के साथ मना रहे हैं।
1: बिल्कुल, और देखिए

0: मनाना भी चाहिए, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना श्रोताओं का आकाशवाणी के साथ, हमारे साथ, ये बहुत पुराना है और ये सालों दर साल ऐसे ही चलता आ रहा है। और वाकई ही आज बधाई का दिन है
1: जी,
0: है ना?
1: और इसी से जुड़ा है आज का प्रश्न। भाई, हम सभी सुनने वालों से जानना चाहेंगे कि आज आपकी रेडियो से जुड़ी जो यादें हैं, आपके पसंदीदा कार्यक्रम हैं, या एक अच्छे श्रोता के अंदर रेडियो क्या खास बात होनी चाहिए, या आपका कोई संदेश हो तो वो आज हमसे साझा कीजिए हमारी ईमेल आईडी पर, जो है fmgoldga@gmail.com।

0: हाथी मेरे साथी। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। और रश्मि जी देखिए, आज देश मना रहा है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती। ये दिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1: जी, और सद्भावना दिवस का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, शांति और सौहार्द को बढ़ावा देना है, जो कि उनके जीवन के कार्यों का मूल मंत्र था। तो आज का दिन है उनके योगदान को याद करने का और देशवासियों को एकजुट होकर शांति और सौहार्द के लिए जो उन्होंने प्रेरणा दी, तो इस पर आज उनको हम याद कर रहे हैं और उनको नमन करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, आज एक और दिन खास है, वो है आज पारसी समुदाय का जो पर्व है वो खोरदाद साल, वो आज मनाया जा रहा है। और यह दिन जो है ना, वो जोरोस्ट्रियन धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुस्त्र के जन्म की खुशी में मनाया जाता है।
1: जी।
0: और इस दिन होता क्या है कि विशेष प्रार्थना और जश्न का आयोजन किया जाता है, और लोग जो है पारसी समुदाय के जो लोग हैं वो अग्नि मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। और साथ ही साथ आज के दिन लोग दान पुण्य भी करते हैं, क्योंकि पारसी धर्म में अच्छे कर्मों और दान को बहुत महत्व दिया जाता है। तो आज के दिन की आप सभी को शुभकामनाएं।
1: तो देखिए, आज बड़ा विशेष दिन है और हम इससे पहले बता चुके हैं कि रेडियो श्रोता दिवस है आज। और रेडियो जो होता है वो केवल मनोरंजन ही नहीं देता, बल्कि हम तो कहेंगे प्रतिभा वो परिवार के सदस्य जैसा है, जो बिना कुछ कहे बिना कुछ मांगे भी आपका साथ देता रहता है, आवाज आती रहती है, ऐसा लगता है जैसे कोई अपना साथ बैठे हुए है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बचपन में हम लोग भी तो देखिए, जब बारिश होती थी रात में तो रेडियो को मैं लेकर बैठ जाया करती थी और उसको एंटीना को इधर उधर घुमाती रहती थी कि कहाँ ये सिग्नल पड़ेगा। तो बचपन की बहुत सारी यादें हैं मेरी भी रेडियो के साथ।
1: जी,

0: गोरा और काला। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज थी मुकेश और लता मंगेशकर की।
1: लेकिन हम तो धीरे धीरे नहीं बोल रहे प्रतिभा, हम तो बिल्कुल बुलंद आवाज में अपने श्रोताओं के लिए घर आंगन में हाजिर हैं, उनकी पसंदीदा जानकारियां लेकर। और जैसा कि तुमने एक प्रश्न पूछा था, हमने प्रश्न पूछा था रेडियो से जुड़ी याद, आपके पसंदीदा कार्यक्रम और एक अच्छे रेडियो श्रोता की क्या खास बात है जो, या आप कोई संदेश हमें लिखकर भेजना चाहें तो आप हमें भेज सकते हैं fmgoldga@gmail.com पर। और एक और ईमेल ऐड कर रही हूँ, fmgoldair@delhi यानी कि fmgoldair@delhi@gmail.com। इन दोनों ईमेल आईडीज पर आप हमें मेल कर सकते हैं और कुछ जवाब भी आने शुरू हो गए हैं प्रतिभा।
0: और देखिए, सबसे पहले हमारे पास जवाब आया नवीन भाटिया जी का। वो कह रहे हैं कि मेरी जो याद है बचपन की वो ये है कि जब वो शायद, वो कहते हैं कि 9th क्लास में थे, तो संडे को सुबह वो संगम प्रोग्राम जरूर सुना करते थे। देखिए
1: क्या बात है,
0: मतलब इतने सालों बाद भी उनको याद है कि वो कौन सा प्रोग्राम सुनते थे और वो उसका उनका जो फेवरेट प्रोग्राम था।
1: जी
0: है ना?
1: बिल्कुल। और डॉक्टर राजेश्वर राव हमारे साथ जुड़ गए हैं शकरपुर में इन विकास मार्ग से। वो कह रहे हैं, जब मैं बच्चा था तो मैं, छोटा सा पॉकेट रेडियो मेरे पास था, उससे मैं क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुना करता था, सॉन्ग सुना करता था और उन दिनों सुन के बड़ा ही मजा आता था ये कार्यक्रम सुनकर।
0: बिल्कुल। और देखिए, ये अफरोज शेख जी हैं सुपौल बिहार से। वो कह रहे हैं कि 38 साल की उम्र में मैं 10 साल से रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ और रेडियो सुने बगैर वो नहीं रह सकते, और तब तक काम करता रहता हूँ और उनको फरमाइश फोन इन प्रोग्राम वो कहते हैं कि होना चाहिए कि लिसनर्स की आवाज भी हम सुन सकते हैं, और वो हमें बधाई दे रहे हैं। जी आपको भी ढेरों ढेरों बधाई, क्योंकि आप जैसे श्रोता हैं, देखिए रश्मि जी, तभी तो हम हैं, है ना?
1: बिल्कुल। और बिहार से हम जाते हैं अमृतसर की ओर, वहां से खजाना गेट से जुड़ चुके हैं प्रेम सागर शुभलता हमारे साथ। वो कह रहे हैं कि हम 100 साल का इंतजार करें आकाशवाणी का और हमें FM गोल्ड बहुत पसंद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आकाशवाणी के FM गोल्ड से हमेशा जुड़े रहिए। और भी बहुत सारी मेल्स हमारे पास आ गई हैं। गौरी शंकर जी की मेल आ गई है नागलोई से। वो कह रहे हैं कि दोनों बेटियों को राम राम जी, राम राम जी। और कह रहे हैं कि 1964 से रेडियो घर पर आया, तब मैं करीब 6 साल का था और पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि उनके घर रेडियो आया है। हम पंजाब में रहते थे, आज भी मुझे वही शौक है रेडियो सुनने का। एक भी दिन अगर ना सुनो तो बेचैनी हो जाए।

0: आती है। इसमें ये फायदा है कि आदमी काम भी करता रहता है, सुनता भी रहता है और कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। जी शुक्रिया गौरी शंकर जी, अगर आपका मेल नहीं आता तो हमें भी लगता है आज क्या बात है भाई, आपका मेल नहीं आया।
1: बिल्कुल, और रश्मि जी मतलब ये जो मेल है, ये जो संदेश है, इनका सिलसिला तो चलता रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि मेल आते रहेंगे। तो लेकिन अभी हम कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: है ना। तो आज हम बात करेंगे देश की उस ऊर्जा की जो हमारे वर्तमान को गति देती है और भविष्य को एक नई दिशा। जी हाँ, बात हमारी युवा पीढ़ी की। देश की युवा शक्ति आज कला, खेल, विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और उद्यमिता जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। नई सोच, नए विचार और नई तकनीक के साथ युवा लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
0: जी, बदलती जीवन शैली ने युवाओं के सामने नए अवसर भी खोले हैं। आज घर बैठकर दुनिया भर की जानकारी हासिल की जा सकती है, ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकती है, नई नई चीजें सीखी जा सकती हैं और अपनी प्रतिभा को दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है। आज हम प्रतिभा शब्द को ज्यादा बोल रहे हैं जी, और लेकिन हम ये कहेंगे कि संतुलन होना भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जरूर संतुलन होना चाहिए। आज मोबाइल फोन और सोशल मीडिया हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, ये हम सभी जानते हैं ना, और इनका जो सही इस्तेमाल हमें सीखने, जुड़ने और अपनी रचनात्मकता को सामने लाने का अवसर देता है। लेकिन साथ ही ये भी तो जरूरी है कि हम ऑनलाइन दुनिया के साथ अपनी वास्तविक जिंदगी को भी उतना ही समय दें।
0: क्यों? जी, खेल कूद हो, प्रकृति के बीच समय बिताना, किताबें पढ़ना, ये सब सकारात्मकता और खुशी ला सकती है और अपने स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर जागरूक होना बहुत जरूरी है। जो हो ही रहे हैं बच्चे आजकल के, जिम हो, योग हो, खेल, डांस, साइकिलिंग या घर पर किया जाने वाला व्यायाम, ये बहुत सारे विकल्प हैं हमारे साथ।
1: बिल्कुल, और देखिए आपने एक्सरसाइज की बात की, साथ ही साथ संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद भी बहुत जरूरी है हमारी ऊर्जा और एकाग्रता के लिए। और व्यस्त जिंदगी में अपने खान पान का ध्यान रखें। और देखिए, मानसिक स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति की देखिए अपनी गति, कार्य क्षमता और अपनी मंजिल होती है, तो आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर बिल्कुल ना करें।
0: तो हम ये कहेंगे प्रतिभा की बदलती जीवन शैली को एक सकारात्मक दिशा दे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और जो युवा ऊर्जा जो हमारे देश को प्रगति के पथ पर लेकर जाएगी उसको सही दिशा में जरूर इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल,
0: तभी तो हम कहेंगे ना कि आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, फिल्म थी घर। और रश्मि जी, आगे हम बढ़े से पहले एक मेल और पढ़ लें
1: जी,
0: है ना। ये मेल आया है योगराज सहगल जी का। वो कहते हैं कि पहले महिला जगत कार्यक्रम आता था और तब भी वो इस कार्यक्रम को सुनते थे, फिर उन्होंने लिखा है कि आधा आकाश हमारा कार्यक्रम के नाम से ये कार्यक्रम आने लगा, तो उसके भी ये रेगुलर श्रोता रहे और आजकल घर आंगन कहते हैं कि मैं सुनता हूँ। और वो ये कह रहे हैं कि वो दृष्टि बाधित हैं और दिल्ली से लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं रेगुलर लिसनर हूँ आपके प्रोग्राम्स का।
1: हम समझ गए, क्योंकि आपने पूरा इतिहास जो महिला कार्यक्रम का था हमें याद दिला दिया, हमें सभी सुनने वालों को याद दिला दिया। वाकई बिल्कुल सही कहा आपने, महिला जगत के नाम से फिर आधा आकाश हमारा और फिर घर आंगन। और उसके साथ घर आंगन के साथ एक और बात कि वो FM चैनल पर भी जुड़ा। देखिए कितने हमारे पुराने श्रोता हैं जो कि पूरी लॉयल्टी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा पूरा कर्तव्य बन जाता है इनके प्रति कि हम उनके लिए सही जानकारियां और सही मनोरंजन लेकर आए और उनका लगातार ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद योगराज जी आपका जुड़े रहने के साथ। ऐसे ही जुड़े रहिए और ईमेल लिखते रहिए हमें। एक और ईमेल आ गई है हमारे पास। आप हैं राजू अग्रवाल, चरणदास, रेखा चौधरी हिसार से। वो कह रहे हैं श्रोता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं रेडियो ने मुझे जीवन दिया है। श्रोता तथा प्रस्तुतकर्ता के साथ रिश्तेदारों से ज्यादा प्यार है। भाई वाह, एक श्रोता का कर्तव्य है कि प्रोग्राम सुनकर उचित प्रतिक्रिया दे और प्रोग्राम की गुणवत्ता बढ़ाए, झूठी तारीफ ना करे। बिल्कुल सही बात, सिर्फ नाम शामिल करने के लिए। वाह, देखिए हमारे श्रोता जो है हमें सिखाते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं अपने श्रोताओं से। बहुत बहुत धन्यवाद राजू आपका।
0: और
1: एक और मेल आ गई है।
0: हाँ जी
1: जी, उग्रसेन यादव जी की मेल है। राम राम कह रहे हैं जी, और कह रहे हैं वैसे रेडियो मैं 1985 से सुन रहा हूं और समाचार ज्यादा मैं सुनता था, पर फिर गानों का भी शौक मुझे लग गया और उर्दू फरमाइश जो है 10 से 11 बजे रात में और आज शहनाज जी पेश करती थी और आज भी मुझे याद है सुबह सयानी साहब की आवाज में भी वो सुना करते थे। उग्रसेन यादव जी नई दिल्ली से कह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो हमारी उर्दू सर्विस है आकाशवाणी की, उसकी शायद आप याद कर रहे हैं। और शहनाज अख्तरी की अगर

0: बात कर रहे हैं तो विविध भारती से शहनाज अख्तरी जुड़ी रही हैं अपने श्रोताओं के साथ थी और सारे कार्यक्रम याद कर रहे हैं श्रोता आज के दिन।
1: मतलब जो हमारे जो एंकर रहे हैं उनकी आवाज आज भी हमारे श्रोताओं के दिलों में ताजा बनी हुई है। क्यों
0: जी बिल्कुल।
1: और अब आगे हम रुख करते हैं कार्यक्रम में
0: जी,
1: है ना। रश्मि जी देखिए, दिल्ली लक्ष्मी योजना की आज हम बात करेंगे जो कि दिल्ली सरकार की एक आर्थिक कल्याणकारी योजना है और जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रति माह 2500 की वित्तीय सहायता दी जाएगी
0: और इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। जो इसकी पहली किश्त है वो 28 अगस्त 2026 को जारी किए जाने की तैयारी है। पात्रता की बात कर लेते हैं तो आवेदक महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और जिसकी वार्षिक आय जो है 2.5 लाख रुपए से कम हो।
1: बिल्कुल। और साथ ही साथ जो भी महिला है, पात्र महिला है, वो कम से कम पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की निवासी होनी चाहिए और उनके पास स्थानीय मतदाता के रूप में वो पंजीकृत होनी चाहिए
0: जी। आयकरदाता, जीएसटी रिटर्न भरने वाले, सरकारी या संविदा कर्मचारी, चार पहिया वाहन मालिक इस योजना के पात्र नहीं है और परिवार में सबसे बड़ी एक महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा और ये पैसे डिजिटली ट्रांसफर किए जाएंगे। इस पैसे को खर्च करने के भी कुछ नियम तय किए गए हैं प्रतिभा।
1: और वो ये है कि जो पहला नियम है वो ये है कि आप 1000 रुपए आपके कार्ड में आएंगे और 1500 रुपए आपके रेकरिंग अकाउंट में डिपॉजिट किए जाएंगे जो आपको इकट्ठे 3 साल बाद मिलेंगे ब्याज सहित। और दूसरा ये कि आप 2500 रुपए फिक्स डिपॉजिट में ले सकते हैं जिसे आपको 3 साल बाद ब्याज के साथ दिया जाएगा।
0: तो इस सभी जो जरूरी दस्तावेज हैं और आधार कार्ड जो है, दिल्ली के मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हस्ताक्षर, क्षेत्र के सांसद या विधायक का समर्थन, संस्तुति पत्र और बिजली या गैस कनेक्शन का बिल, ये सारे दस्तावेज चाहिए। और इसके अलावा प्रतिभा,
1: इसके अलावा ये है कि अब आपको जो आधिकारिक वेबसाइट है जो कि है दिल्ली लक्ष्मी योजना ऑफिशियल पोर्टल, उस पर आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है और बहुत सारे आवेदन हो भी चुके हैं तो आज ही खुद को रजिस्टर करें और इस योजना का लाभ उठाएं।

0: मंगेशकर की आवाज में। अभी आपने एक गीत सुना, फिल्म थी दो रास्ते
1: जी। और आगे बढ़ते हैं प्रतिभा, देखिए जब 40 के पार उम्र हो जाती है तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता है ना। हाँ। हम सभी जानते हैं हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं, ऊतकों और अस्थि से मिलकर बना हुआ है। शरीर के पास भी जो कहते हैं ना, थोड़ा टूट फूट होती रहती है। हाँ। हमारी शरीर की कोशिकाएं बनती बिगड़ती रहती हैं।
0: बिल्कुल। और देखिए होता क्या है कि एक समय के बाद शरीर थोड़ा सा शिथिल पड़ जाता है और शरीर की जो कार्य प्रणाली है वो धीमी पड़ जाती है। ऐसे में शरीर में प्राकृतिक रूप से मांसपेशियों और हड्डियों की डेंसिटी यानी घनत्व कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए बढ़ती उम्र के साथ सक्रिय रहना और स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है।
1: तो फिर ऐसे में क्या किया जाए भाई? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जाए। मांसपेशियों का क्षय होने से ये रोकती है और मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाली जो कसरत है यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आप घर पर रहकर भी कर सकते हैं बिना किसी जिम के जाए और बिना किसी उपकरण के।
0: बिल्कुल।
1: कुर्सी की मदद से आप स्क्वैट कर सकते हैं, स्क्वैट माने घुटनों के जो बल हम बैठते हैं। हाँ। और दीवार के सहारे आप पुशअप कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और देखिए काफ रेज भी कर सकते हैं, मजबूत दीवार को पकड़कर पंजों के बल ऊपर उठना और धीरे धीरे नीचे आए, इससे आपकी जो काफ मसल्स होंगी वो काफी मजबूत होंगी। और एक चीज और किया जा सकता है रश्मि जी, वो ये कि घर में पानी की 1 लीटर की बोतल या 2 लीटर की बोतल पानी से भर कर भी आप बाइसेप्स कर्ल, शोल्डर प्रेस या फ्रंट रेस जैसी छोटी छोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो मसल्स को ताकत देंगी।
1: जी, शुरुआत जो करनी चाहिए वो हल्के वजन से करें और हर गतिविधि को धीरे और नियंत्रित तरीके से उठाएं। अगर आपको दर्द हो या असहजता महसूस हो तो फिर व्यायाम ना करें ऐसा वाला। और उसके बाद जो पानी की बोतल को उठाएं तो याद रखें पानी पीने के काम ही नहीं आता बल्कि आपके घर के आसान वर्कआउट का हिस्सा भी बन सकता है।
0: बिल्कुल। और देखिए होता क्या है कि अगर आप वजन उठाने वाले व्यायाम करते हैं तो हड्डियां तो मजबूत होती ही होती है, साथ ही जो फ्रैक्चर का खतरा है ना वो कम हो जाता है। मेटाबॉलिज्म होता है जिससे बड़ा हुआ वजन नियंत्रित होता है।
1: जी, ये बिल्कुल जोड़ों को भी सहारा देते हैं और दैनिक कार्य में आसानी होती है, गिरने और चोट लगने का जोखिम भी कम होता है। तो हम तो ये कहेंगे कि अगर आपकी भी 40 पार कर चुके हैं या 40 के लेट 40s में हैं तो आज ही अपनी दैनिक दिनचर्या में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अवश्य शामिल करें जो कि बढ़ती हुई जो उम्र है उसके दबाव और तनाव को कम करें।

0: मालूम नहीं है, हमसे सुनो।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी शागिर्द। और रश्मि जी, एक मेल और पढ़ देते हैं हम लोग, है ना। सुदर्शन मुखी और अनीता मुखी, सिमरन मुखी, ये लोग लिख रहे हैं शांतिनगर सोनीपत से। और उन्होंने देखिए रेडियो को कितने अच्छे से डिफाइन किया है कि सूचना, शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन, है ना। और वो कहते हैं कि अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए विविध भारती दिल्ली के कार्यक्रम संगम हम सफर में वो पोस्ट कार्ड भेजते थे, और आज भी मुंबई केंद्र पर कार्यक्रम मन चाहे गीत में वो अपने फरमाइशें जो है वो भेजते हैं, और वो हमें आज के दिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो हमारी तरफ से भी आप सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं
2: जी। और एक और मेल आ गई है हमारे पास, सुरभि हमारे साथ जुड़ गई है मयूर विहार से। वो कह रही है कि रेडियो जो है वो हमारे परिवार का सदस्य है, और मोबाइल और रेडियो में फर्क ये है कि भाई मोबाइल को तो चार्ज करना पड़ता है, पर रेडियो को तो बस हम लगा देते हैं, ऑन कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि रेडियो में जब हम कल्पना करते हैं तो कल्पना में जो हीरो होता है

0: है वो हमेशा जो है हैंडसम होता है, ऐसा वो लिख रही हैं। और इसके अलावा राघव जुड़ गए हैं दिलशाद गार्डन से, वो कह रहे हैं रेडियो की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि घर में जब काम ज्यादा होता है और काम करने का मन नहीं होता है, कोई कहता है काम करो तो मैं कह देता हूँ भाई मैं रेडियो में अपना बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम सुन रहा हूँ। भाई वाह क्या बात है, कहते गाने इतने अच्छे बजते हैं कि काम करने का मन नहीं करता। भाई ये तो बात सही नहीं, गाने आप सुनते रहिए और साथ में जो घर के जरूरी काम है वो करते रहिए।
1: बिल्कुल है ना। और देखिए रश्मि जी अब आगे बढ़ते हैं, बात महिलाओं की, महिलाएं आज सशक्त हैं और देखिए उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है और आज महिलाएं नए आयाम गढ़ रही हैं। तो कभी कभी कार्यस्थल पर सुरक्षा को लेकर उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए सरकार द्वारा शी बॉक्स पोर्टल की शुरुआत की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ये एक ऑनलाइन पोर्टल है और जो ये जो पोर्टल है ये कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों को दर्ज करने और उनकी निगरानी के लिए एक सुरक्षित डिजिटल मंच है।
0: अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो सरकारी, निजी, संगठित, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली सभी महिलाएं इस पर शिकायत कर सकती हैं। और पोर्टल पर शिकायत एक पीड़ित महिला या शिकायतकर्ता की ओर से या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दर्ज की जा सकती है और यदि वो पीड़ित महिला स्वयं है तो वो अपना मूल विवरण जैसे उसकी कार्यस्थिति, नाम, फोन नंबर और ईमेल दर्ज करके पोर्टल पर उसे लॉगिन करना होता है।
1: और देखिए शिकायत करने वाला जैसा कि बताया कि कोई और व्यक्ति भी कर सकता है उस महिला के बिहाफ पर, तो उसे भी अपना नाम, शिकायतकर्ता के साथ उनका संबंध और शिकायतकर्ता की ओर से अंडरटेकिंग के साथ साथ पीड़ित महिला और शिकायतकर्ता की कार्यस्थिति, नाम, फोन नंबर और ईमेल दर्ज करके पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
0: तो अगर आप शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो इस पोर्टल पर जाइए और शिकायत दर्ज कीजिए, तो फिर इसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग भी होगी और ये जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है।
1: और देखिए शिकायत जो है वो संबंधित आंतरिक समिति और स्थानीय समिति को जांच के लिए सीधे भेज दी जाती है और महिलाओं को शिकायत दर्ज करने, उनकी स्थिति पर निगरानी रखने और सुनिश्चित करने में ये मदद करता है कि उनकी शिकायतों का समय पर निपटारा होगा।
0: तो इस अधिनियम के तहत जांच के लिए जो दिन है वो 90 दिन का समय निर्धारित किया गया है। तो हम तो ये कहेंगे अपने अधिकारों को जाने, अपने कर्तव्यों को जाने, समझें और किसी भी परिस्थिति में सहायता लेने से ना हिचकें।

0: रश्मि जी, एक मेल और है इदरी सैफी जी का, जो कह रहे हैं कि वो बचपन से रेडियो सुन रहे हैं और कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है और हम श्रोताओं को बता दें कि वो ये गाना सुन रहे हैं फिल्म खुशबू से, आवाज है आशा भोसले की। तो इस वादे के साथ फिर से मुलाकात होगी किसी और दिन बहुत सारी जानकारियों के साथ। तो मुझे यानी प्रतिभा को और
1: रश्मि कुकरेती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। श्री सिंह ने जापान के कुमामोटो में आए भीषण भूकंप पर संवेदना व्यक्त की और हर जरूरी सहायता देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत जापान संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी सम्मान और पुराने सभ्यतागत संबंधों पर आधारित है। जापान के रक्षा मंत्री ने भूकंप पर भारत की संवेदना के लिए आभार जताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक चेन्नई के कोवलम में शुरू हुई। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि बैठक के दौरान सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और समय पर तैयारियां पूरी करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्म जोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जनकल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। CISF ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगर

तला जा रहे थे। जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व और पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत तथा बचाव कार्य जारी है। घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 557 अंक बढ़कर 77,466 जबकि निफ्टी 141 अंक के वृद्धि के साथ 24,219 पर कारोबार कर रहा था। एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टर्डम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाका निशी को हराया। पीवी सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

1:55 हुए हैं। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल, आपके साथ है रजनी। आज बात एक ऐसे संगीतकार की जिन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। बात कर रहे हैं पद्म भूषण से सम्मानित संगीतकार खयाम की। शुरुआत करते हैं उनकी फिल्म नूरी के इस गीत से, जिसमें आवाज है लता मंगेशकर की।

18 फरवरी 1927 को पंजाब के रोहा शहर में जन्म हुआ मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी का। उन्हें संगीत का शौक बचपन से ही था। बचपन में ही घर छोड़कर वो अपने चाचा के यहाँ दिल्ली चले आए और संगीतकार पंडित अमरनाथ से शास्त्रीय संगीत सीखने लगे।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़े। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल और आज बात है संगीतकार खयाम की। शुरुआत में खयाम फिल्मों में हीरो बनने का सपना देखते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका झुकाव संगीत की तरफ हो गया और फिल्मों में काम पाने के लिए 16-17 बरस की उम्र में खयाम लाहौर पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात हुई पंजाबी संगीत निर्देशक बाबा चिश्ती से। खयाम ने चिश्ती की एक रचना उन्हें गा के सुनाई। बाबा चिश्ती उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खयाम को अपना असिस्टेंट बना लिया। उनके साथ 6 महीने काम करने के बाद खयाम लुधियाना आ गए। फिर क्या हुआ बताएंगे आपको अगले गीत के बाद, जिसे गाया है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने। फिल्म है त्रिशूल।

लुधियाना आने के बाद खयाम ने कुछ समय सेना में भी काम किया और फिर फिल्मों में काम करने का सपना लेकर वो मुंबई आ गए। 1948 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, हीर रांझा। इसके संगीतकार थे शर्मा जी वर्मा जी। इस जोड़ी के एक संगीतकार थे रहमान वर्मा और दूसरे संगीतकार जो शर्मा जी के नाम से संगीत दे रहे थे वो दरअसल थे खयाम। इससे पहले 1947 की फिल्म रोमियो जूलियट में खयाम ने जोहरा बाई अंबाले वाली के साथ एक गीत भी गाया था। इसके बाद बीवी और प्यार की बातें जैसी फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया, लेकिन 1953 में आई फुटपाथ से उन्हें पहचान मिली। इसी फिल्म से उन्होंने पहली बार खयाम के नाम से संगीत दिया। इसके बाद फिर सुबह होगी, लाला रुख और शोला और शबनम जैसी फिल्मों के गीत भी काफी लोकप्रिय हुए, लेकिन 1964 में आई शगुन फिल्म के गीतों ने उन्हें बड़ी कामयाबी दी।

शगुन फिल्म का ये गीत आपने सुना जगजीत कौर की आवाज में, जगजीत कौर जो कि खयाम साहब की पत्नी थी। 70 और 80 का दशक खयाम के लिए सबसे कामयाब वक्त रहा। इस दौरान उनकी कभी कभी शंकर हुसैन, त्रिशूल, खानदान, नूरी, थोड़ी सी बेवफाई, चंबल की कसम, दर्द, आहिस्ता आहिस्ता, बाजार और रजिया सुल्तान जैसी फिल्में आईं। कभी कभी और उमराव जान के लिए खयाम ने फिल्म फेयर अवार्ड जीता और उमराव जान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगली आवाज आप सुनेंगे आशा भोसले की, फिल्म उमराव जान।

0: अपनाए।
1: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जो कि जरूरतमंद कलाकारों और टेक्नीशियंस की मदद करता है और इसके लिए उन्होंने अपनी सारी की सारी संपत्ति दान कर दी थी। अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म बाजार से, आवाज है लता मंगेशकर और तलत अजीज की।

वक्त हुआ है 1:38 और 12 सेकंड। कलाकार बेमिसाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार खयाम की। खयाम की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने गायिका जगजीत कौर से शादी की। अपने बेटे प्रदीप की मौत के बाद उन्होंने खयाम जगजीत कौर चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की।

19 अगस्त 2019 को 92 बरस की उम्र में हृदय गति रुकने के कारण खयाम का निधन हो गया। वो बीच हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन उनका जो सुमधुर संगीत है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। खयाम ने हिंदी के अलावा कुछ पंजाबी फिल्मों में भी संगीत दिया था। मीना कुमारी की नज्मों की एल्बम आई राइट आई रिसाइट में भी खयाम का ही संगीत था। और आपको बता दें कि संगीत के साथ साथ खयाम शब्दों के जादूगर भी थे। उन्होंने कुछ गैर फिल्मी गीत लिखे भी थे और उन्हें धुनों में भी पिरोया था। फिलहाल आज का कलाकार बेमिसाल का आखिरी गीत फिल्म कभी कभी से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की।

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 अगस्त महीने की 20 तारीख व दिन है गुरुवार। अब से लेकर रात 9:16 तक हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम निष्पादक श्रीमती संगीत सोमो, मोनपा मदघोषक श्री लोपसंग तोपतेन, तकनीकी अभियंता श्री कमयंगफो और शिखा डेका, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अमोल कुमार दास और स्टूडियो में उपस्थित अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका टाशी छुटन। आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है।

ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे।

0: to disputes, security and development issues. India-Singapore Ministerial Roundtable takes place in Singapore to strengthen bilateral cooperation in strategic areas including semiconductor and cyber security. Bangladesh to vote for the first time to elect its president today after a gap of 35 years. And Teresa Jolly and Gayatri Gopichand enter women's doubles quarterfinals of BWF World Championships. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तमिलनाडु के कोवलम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमे ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमे और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
2: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
1: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
2: हमारी मेरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है। इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
1: श्री कोइजुमे ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने

0: और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्र विरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण का रास्ता अपना रही है।
2: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति, मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में ही विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने बाद भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ

0: के तीसरे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
1: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70 लाख पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
0: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
2: एक पेड़ मां के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है। हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
0: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और 1 सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनेदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
0: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577 जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर

0: चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे नरेंद्र चंचल की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नरेंद्र चंचल की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। इसके साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं पर समाप्त हुआ। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज चुके हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी।
2: दूसरा कोई मैच है क्या?
1: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
2: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
1: पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास।

0: की सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
1: सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे भूपेन हजारिका की आवाज में चंद बांग्ला आधुनिक गीत।

0: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला मंच। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे 190 माउंटेन ब्रिगेड तवांग में स्थित मेजर रालिंगनाओ बॉब खातिंग के वीरता का संग्रहालय में म्यूजियम कोऑर्डिनेटर चनली लेगुम सिंगफू से भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता है दर्जी ड्रामा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम महिला मंच में आप सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हम आकाशवाणी तवांग की टीम 190 माउंटेन ब्रिगेड तवांग में स्थित मेजर रालिंगनाओ बॉब खाटिंग की वीरता का संग्रहालय में आए हुए हैं और हम यहाँ पर मुलाकात करने जा रहे हैं यहाँ के म्यूजियम कोऑर्डिनेटर सनली लेगुम सिंगफू जी से। तो सनली जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
2: थैंक यू।
1: श्रोताओं, शायद आपको याद होंगे कि इस संग्रहालय के उद्घाटन गत 31 अक्टूबर 2024 को हमारे देश के वल्लभ सरदार वल्लभ भाई पाटिल, या उन्हें लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, तो उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस संग्रहालय के उद्घाटन हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आसाम के शहर तेजपुर से वर्चुअल माध्यम से किया गया। तो श्रोताओं, आपने इस संग्रहालय के बारे में सुने तो बहुत होंगे और आप में से कई लोग यहाँ पर दौरे भी कर चुके होंगे, लेकिन इस म्यूजियम के बारे में विस्तार से आज हम संजय जी से जानकारी प्राप्त करेंगे और आप तक हम जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। जी हाँ, तो हम म्यूजियम में पहुँचने के बाद हमें सबसे पहले प्रवेश द्वार के सामने ही देखने को मिल रहे हैं कि द सोल ऑफ इंडिया सेक्शन, तो इसकी विशेषता क्या है, इस बारे में संजय जी आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: आप म्यूजियम जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले सोल ऑफ इंडिया दिखेगा। तो इसका रीजन ये है कि सोल ऑफ इंडिया हमने इसलिए बनाया ताकि हम इंडिया को एक तरह से यूनाइट कर सके। तो हमने सोचा कि अगर हम इंडिया को यूनाइट करना चाहते हैं तो हम किस तरह से सबसे अच्छी तरह कर सकते हैं। तो हमारे शेयर्ड स्ट्रगल्स, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल्स की जो कहानी है, उसी की मदद से हम हमारे इंडिया को ट्रूली यूनाइट कर सकते हैं। तो इसी वजह से सोल ऑफ इंडिया, जैसे ही आप म्यूजियम एंटर करेंगे तो आपको वो दिखेगा। एंड देन सोल ऑफ इंडिया पर आपको टोटल 36 कैस्क मिलेंगे। तो हमारे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, सो होल ऑफ इंडिया से हमने कलेक्ट करके यहाँ पे सारी सॉइल रखी हुई है। ईच एंड एवरी लोकेशन हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जगहों से कलेक्ट की गई है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमने दीपा से कलेक्ट की है। दीपा पर इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले हमारा झंडा वहीं पर लहराया गया था, तो हमने दीपा से कलेक्ट की है। और फिर झारखंड जैसे जगहों से भी कलेक्ट की है, जहाँ पर नीलांबर और पीतांबर एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे, तो वहाँ पर उन्हें एक पैर पर हैंग कर दिया गया था ब्रिटिश द्वारा, तो उस जगह से भी हमने कलेक्ट की है। तो हमारे रिसर्च के द्वारा हमने उस एग्जैक्ट पैर को ढूंढ निकाला, फिर हमने उसी जगहों से कलेक्ट। तो सिमिलरली सारी सॉइल्स ऐसे ही कलेक्ट की गई है। तो इस सॉइल को हमारे एक रॉयल अरुणाचल राइडर्स, एक ग्रुप ऑफ राइडर्स है, उन्होंने पूरी इंडिया ट्रेवल कर ये सॉइल्स कलेक्ट की है। टू बी प्रिसाइज, उन्होंने 25 डेज में 21 स्टेट्स कवर की है और जो रेस्ट ऑफ द सॉइल्स है वो उनके बाइकर्स ग्रुप की कनेक्शन द्वारा यहाँ भेजी गई है।
1: जी जी, तो इस म्यूजियम के अंदर स्थित द सोल ऑफ इंडिया सेक्शन हमें ये बताती है कि हमारे इस महान देश के लिए देश भर में जहाँ जहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, तो उन पवित्र जगहों से हमारे अरुणाचल प्रदेश के राइडर्स ने उन पवित्र माटी को लेकर आए और हम आज उन सारे जगहों पर जाकर देखना तो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इस संग्रहालय के अंदर आकर आप उन सारे पवित्र जगहों का दर्शन कर सकते हैं। जी चलिए, तो सनली जी आप हम म्यूजियम के दूसरी सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं और आप हमें बताइए कि मेजर बॉब खाटिंग अ लाइफ ऑफ वेलियर क्या कहता है, क्या इसकी क्या विशेषता है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को और बाहर के लोगों को ये जरूर जानकारी है कि हमारे तवांग को भारत देश में शामिल करने में मेजर रालिंगनाओ बॉब खाटिंग जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, लेकिन उनके जीवन के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, तो आप हमें बताइए।
2: फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर जब आप सोल ऑफ इंडिया देखेंगे, उसके बाद आपको मेजर खाटिंग की जो लाइफ हिस्ट्री है, उनके बारे में, उनकी लाइफ टाइमलाइन, वो सारी आपको देखने को मिलेगी मेजर खाटिंग की गैलरी पर। तो इस गैलरी पर हमने उनकी लाइफ फेसेस रखी है, तो सारी उनकी अचीवमेंट्स, जो पोजीशंस उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में हेल्प और वो कहाँ पर पैदा हुए थे वो सब। तो आपको अच्छी तरह से जानना है तो आपको खुद म्यूजियम पर आकर विजिट करके सब कुछ जानना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना ही बता सकती हूँ, यहाँ पे आपको

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भूपेन हजारिका की आवाज में चंद बांग्ला आधुनिक गीत। इसी के साथ आज का विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यहीं पर समाप्त हुआ।

0: आप इस गैलरी पर आएंगे तो आपको उनकी प्रेजेंस फील होगी, बिकॉज आप जो उन्होंने तवांग ले किया था वो शायद बहुत बड़ी बात है, और वो एक बहुत महान इंसान भी थे, बिकॉज एक ट्राइबल इंसान होके उन्होंने बहुत सारी पोजीशंस अपनी लाइफ टाइम में हेल्प, वो एक टीचर थे, एक सोल्जर थे, पॉलिटिशियन थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, फिर वो डिप्लोमेट भी थे, तो उसी वजह से हमने ये म्यूजियम उनकी याद में बनाया है। और उन्हें एक्चुअली 1957 पर पद्मश्री भी मिला था, तो वो मणिपुर के पहले ट्राइबल इंसान थे जिन्हें पद्मश्री मिला था। फिर उन्होंने अपनी एंड ऑफ करियर में बिफोर रिटायरमेंट वो एम्बेसडर टू बर्मा की तरह भी सर्व किए थे। उस समय भी वो एक ओनली ट्राइबल फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट ट्राइबल फ्रॉम इंडिया हु सर्व्ड एज एम्बेसडर टू बर्मा थे। एंड अगर आप आगे मूव करते रहेंगे तो आपको उनकी पर्सनल आउटफिट्स देखने को मिलेगी, उनकी फैमिली एंड फ्रेंड्स ने यू नो मेजर खटिंग के बारे में मेमोरी शेयर करते हुए आपको देखने को मिलेगी इस गैलरी पर।
1: जी, हमें इस सेक्शन के अंदर आने के बाद ये पता चलती है कि मेजर खाटिंग ने अपने जीवन में किन पदों को प्राप्त किए थे, किन पुरस्कार को उन्होंने प्राप्त किए थे, और उनके द्वारा उपयोग किए गए चीजें, उनके कपड़े, और यहाँ तक कि उनकी असली आवाज हमें सुनने को मिलता है। और जैसे कि सनली जी ने कहा कि सचमुच हमें ऐसा लगता है कि मेजर खाटिंग यही है और हम उनके घर आए हुए हैं। और ऐसे ही हम संडी जी के साथ बातें करते करते अब म्यूजियम के तीसरे सेक्शन पर पहुंच चुके हैं, जिसके नाम है द टेकिंग ऑफ तवांग 1951। इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी।
0: तो मेजर खटिंग यहाँ पर 1951 पर आए थे, और उन्होंने तवांग को 1951 पर ही तिब्बत से आजाद करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में लाया था, बिकॉज एट दैट टाइम तिब्बत के अंदर था तवांग, इट वॉज अंडर तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन। फिर ये जो टेकिंग ऑफ तवांग गैलरी है, ये आपको पूरी कहानी इन अ वे, सो इट नरेट्स द होल स्टोरी ऑफ हाउ ही इंटीग्रेटेड तवांग इनटू इंडिया। तो उनकी जर्नी कैसी रही, कौन लोग थे जो इस इंटीग्रेशन पर इन्वॉल्व थे, वो सारी आपको देखने को मिलेगी। एंड दो जो लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन पे यू नो दे हैड हैंड इन दिस इंटीग्रेशन वाज जयराम दास दौलतराम, हु वाज देन द गवर्नर ऑफ असम, एंड देन सरदार वल्लभ भाई पटेल। नो बिकॉज ऑफ हिम वी आर लाइक इट वॉज रिकग्नाइज दैट तवांग नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड इन टू इंडिया। सो ही वॉज द बिग ब्रेन बिहाइंड दिस होल ऑपरेट, दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल तवांग हिज लास्ट गिफ्ट टू इंडिया। एंड एस वी मूव ऑन, इस गैलरी पर आपको मेजर खटिंग की खुद की हैंड राइटिंग एंड अगेन इंटरव्यूज, जहाँ पे पीपल आर शेयरिंग द मेमोरीज और देयर एक्सपीरियंस, या जो उन्होंने फील किया था इंटीग्रेशन के वक्त, वो मेजर खटिंग के बारे क्या सोचते थे और तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे क्या सोचते थे, वो सारी आपको इस गैलरी पर देखने।
1: जी जी जी, अब हम म्यूजियम के अंदर यूं ही चलते हुए अब ऐसी एक मजेदार सेक्शन में पहुंच चुके हैं, जिसके नाम है मॉन्यूल ब्लेस्ड लैंड ऑफ द मोनपा, जहां पर हमें ये देखने को मिलते हैं कि मोनपा जनजाति के लोग पुराने जमाने में किन चीजों के उपयोग करते थे, जैसे खाना बनाने के लिए, पहनने के लिए, और कपड़े किस तरह से बुनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है बुद्धिज्म के इतिहास। तो इस बारे में आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगे, और जो बाहर से पर्यटक आकर यहाँ देखते हैं उन सारे आर्टिफैक्ट्स को, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं होगी कि इसे किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको जानना है तो आपको आगे डिजिटल सेक्शन की ओर बढ़ने होंगे, और वहाँ पर आपको सारे चीजों को उपयोग किए जाने वाले वीडियो देखने को मिलेंगे।
0: सो दिस गैलरी इज कॉल्ड द हेरिटेज ऑफ मोन्यूल, यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन, सब कुछ आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस गैलरी की एक यूनिक बात ये है कि जब आप आएंगे तो आप आर्टिफैक्ट्स को एक्चुअली टच और फील कर सकते हैं। यूजुअली आप जब म्यूजियम पर जाते हैं तो आप डू नॉट टच वाले साइन देखते हैं, पर इस गैलरी पर आप एक्चुअली टच और फील कर सकते हैं। तो आफ्टर आप वो गैलरी पर टच एंड फील करके आएंगे, उसके बाद आपको डिजिटल गैलरी देखने को मिलेगा। तो इस गैलरी के बिहाइंड थॉट प्रोसेस ये था कि आप वहाँ पर सब कुछ फील टच करेंगे, और यहाँ आके आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे डिजिटल कॉन्टेंट्स होंगे, तो आप यहाँ पे लाइफ ऑफ ब्रोकपास देख सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने वहाँ पे आरा बनाने वाली यूटेंसिल देखी होगी, तो फिर आप यहाँ पर देख सकेंगे कि आरा किस तरह बनाया जाता है। उसके लिए हमारे पास 2 TV पैनल्स है जहाँ पे आपको वो देखने को मिलेगा। एनी अदर, छुरपी कैसे बनती है, ब्रोकपास कैसे जीते हैं, जो आप शिंखा पहनते हैं मोनपास लोग, तो वो कैसी बनती है वो भी

0: को देखने को मिलेगी. एंड एट लास्टली वी हैव यहाँ पे जो होलोग्राम, दिस इज अ टेक्नोलॉजी, उसे होलोग्राम फैन कहते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगी. एंड देन आपको एक एवी डिस्प्ले देखने को मिलेगा, दैट्स ऑडियो विजुअल डिस्प्ले, जहाँ पे आपको तोरग्या, जो यहाँ का बहुत फेमस फेस्टिवल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, तो वो डांस फेस्टिवल और जो कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए जो फेस्टिवल मनाया जाता है, उसका भी एक ग्लिम्स आपको देखने को मिलेगा. एंड लास्टली आई फॉरगॉट टू मेंशन, लेकिन जो मोनपा गैलरी है वहाँ पे आपको वर्चुअल रियलिटी, दैट्स वीआर हेडसेट्स, वो भी आपको मौजूद दिखेंगे. तो वहाँ पे हमने 3 मोनेस्ट्रीज, जो तवांग के इन एंड अराउंड सबसे पुराने मोनेस्ट्रीज की तरह जाने जाते हैं, दैट्स क्रोमतेन, किमनास और तकसंग, वो 3 गोम्पा के वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स पर आपको देखने को मिलेंगे. तो इसे हमने इसीलिए रखा है क्योंकि इन मोनेस्ट्रीज में जाने के लिए, एक तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज है, एंड अगर आपको वहाँ पे विजिट करना है तो इधर आपको बहुत हाइक करना पड़ता है या फिर फूड रिस्ट्रिक्शन से आप रसुन नहीं खा सकते, प्याज नहीं खा सकते. तो बाहर से विजिटर्स आएंगे तो अगर वो 2-3 दिन के लिए आएंगे तो एक पूरा दिन वो इन मोनेस्ट्री पे डेडिकेट नहीं कर सकते, या फिर जो बूढ़े लोग हैं यहाँ के या बच्चे हैं वो इतने स्ट्रेंथ वाइज इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो वहाँ पर जा सके, पर उन्हें फिर भी अगर वो म्यूजियम पर आएंगे तो बिना वहाँ जाए उनके मॉनेस्ट्री के दर्शन हो जाएंगे, उसी वजह से हमने वो रखा.
1: तो चलिए, हम एक ऐसी जगह पर पहुँच चुके हैं, एक ऐसी सेक्शन पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमें मेजर खाटिंग की असली स्वर सुनने को मिलते हैं, तो इस बारे में बताइए.
0: सो इस सेक्शन पे इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ डिजिटल गैलरी, तो यहाँ पे आपको मेजर खाटिंग की आवाज़ सुनाई देगी. तो वो 1985 पे उनके मृत्यु के 5 साल पहले वो तवांग फिर आए थे तवांग की कंडीशन चेक करने के लिए, तभी उन्होंने आकाशवाणी तवांग जो है वहाँ पर उन्होंने एक इंटरव्यू दी थी. तो उसी इंटरव्यू के बदौलत हम ऑल थैंक्स टू आकाशवाणी तवांग हम उनकी आवाज़ आज सुन पा रहे हैं, बिकॉज प्रायर टू दिस उनकी कोई रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो कुछ मौजूद नहीं थी. तो इट्स ऑल थैंक्स टू आकाशवाणी तवांग, वी आर एबल टू लिसन टू हिज वॉइस राइट हियर इन द म्यूजियम. एंड आफ्टर आप उनकी आवाज़ सुनेंगे फिर आपको फ्लैग इन प्लान द फ्लैग वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी. सो हमने प्लान द फ्लैग इसीलिए बनाया था बिकॉज उन्होंने तवांग को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर झंडा हमारा इंडियन फ्लैग गाड़ कर ही उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया था यहाँ पर तवांग पर. तो हम हमारे विजिटर्स को वही सेम फीलिंग जब मेजर खाटिंग ने झंडा प्लांट किया था तो वो सेम फीलिंग हम उनको देना चाहते थे, उसी वजह से हमने ये सेक्शन प्लान द फ्लैग बनाया है जहाँ पर आप अपना खुद का झंडा गाड़ कर वो सेम फीलिंग शेयर कर सकते. फिर तो अभी हम टूवर्ड्स द एंड आ चुके हैं, तो आफ्टर प्लान द फ्लैग आपको पिक्चर ऑफ यूनिटी देखने को मिलेगी जहाँ पे आप सरदार पटेल एंड मेजर खाटिंग जो 2 ग्रेट पर्सनैलिटीज है जिसके वजह से हम यहाँ तवांग पर खड़े हैं एंड इट्स पार्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप उन दोनों के साथ भी फोटो ले सकते हैं. एंड लास्टली हम फिर एंट्री फॉयर पर ही आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर आपको एक कोट भी देखने को मिलेगा, तो वो सेम आकाशवाणी तवांग वही सेम 1985 इंटरव्यू की है जहाँ उन्हें इंटरव्यूअर ने पूछा था कि आप जो यूथ्स ऑफ तवांग हैं उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं, तो आपको वो कोट दिखेगा जो मेजर खाटिंग यहाँ के यूथ्स के लिए छोड़कर गए थे.
1: जैसे कि सनली जी ने म्यूजियम के अंदर चलते चलते हमें इस म्यूजियम की विशेषताएं के बारे में बताएं, तो हमें काफी अच्छे लगे इस बारे में जानते हुए. और अब हम वापस एक बार प्रवेश द्वार के सामने पहुंच चुके हैं, लेकिन अब हम यहां से अभी जा नहीं रहे हैं बल्कि हमें कुछ और सेक्शन के बारे में और जानने हैं, क्योंकि हमारे अभी गैलरी गाइड लोबसांग छिकी जी से मुलाकात करनी तो बाकी है. तो जी हाँ, हम अब लोबसांग छिकी जी से मुलाकात कर रहे हैं, यहाँ के गैलरी गाइड. तो लोबसांग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में. और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे मेडल्स रखे हुए हैं जिसे मेडल सेक्शन कहते हैं, तो इन मेडल्स की क्या विशेषता है, आप हमारे श्रोताओं को बताइए.
2: ये सेक्शन जो उनका मेडल सेक्शन है, लाइक वो कुछ गिना चुना इंसानों में से था जिनको दोनों गवर्नमेंट से मेडल मिला था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी मिला था और इंडियन गवर्नमेंट से भी मिला था. ये उनका फर्स्ट मेडल है, मिलिट्री क्रॉस मेडल, और इनको रिसीव किया था 1944 में और इसको दिया गया था ब्रिटिश एम्पायर ने. और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था. और उनका वर्मा स्टार मेडल है, उनको इंडियन इंडिपेंडेंस मेडल मिला है, उनको पद्मश्री मिला है, और उनको पद्मश्री मिला है.

0: 1957 को, और उनको अरुणाचल रत्न भी मिला है. उनको अरुणाचल रत्न मिला है इन 2020-21, और वो दूसरा इंसान था जिनको अरुणाचल रत्न मिला. और फ्रॉम 1987 टू 2020-25 अभी तक में सिर्फ तीन ही को मेडल मिला है और वो दूसरा इंसान है. तो आप यहाँ पे आएंगे तो आपको उनका अचीवमेंट सब यहाँ पे आप देख सकते हैं और उनका आवाज सुन सकते हैं. आपको ऐसा लगेगा कि आप यहीं पे उन्हीं के सामने बैठे हो, उन्हीं का आवाज सुन रहे हो.
1: हम आगे बढ़ते हुए अब इस सेक्शन में पहुंचे.

0: 1962 में इंडिया में वार हुआ था, वो दो साइड से, एक अक्साई चीन और एक तवांग से। और तवांग में उन्होंने असम तक पूरा चाइनीज आर्मी चले गए थे, पर जो अक्साई चीन है वहाँ पे उन्होंने 2400 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा उन्होंने कैप्चर कर लिया था और वो अभी भी उन्हीं के अंदर में है। और यहाँ पे एक पर्सन है, उसका नाम है नीलम टीपी। वो पूरे अरुणाचल से वो अकेला ही था जिन्होंने 1962 वार में हिस्सा लिया था। ये निशी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और अगर आप यहाँ पे 1962 गैलरी में आते हो तो आपको यहाँ के 1962 वार के ऊपर में उनके बैकग्राउंड के बारे में सब पढ़ने को मिलेगा, न्यूज़ कवरेज को देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे उन्होंने कौन से एरिया से उन्होंने तवांग में एंटर किया था वो सब मैपिंग देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे 1962 वार में जितने भी गन्स वेपन्स यूज हुआ है वो सब आपको ओरिजिनल देखने मिलेगा। और 1962 वार में जो शहीद हुए थे और उनको जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है उन सभी को आपको देखने मिलेगा ये गैलरी में, और शहीदों के नाम। और यहाँ पे कुछ मूवीज है जो 1962 वार के ऊपर में बेस्ड है, और कुछ बुक्स जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। और यहाँ पे रेजिमेंट्स है जिन्होंने 1962 वार में पार्टिसिपेट किया, उनका सिंबल है। और यहाँ पे 56 रेजिमेंट ने 1962 वार में पार्टिसिपेट किया था।
1: जी, तो अब हम एक बार फिर द लैंड ऑफ मोनपास के सेक्शन में पहुंच चुके हैं। तो इसकी जो डिजिटल सेक्शन है इस बारे में हमें सनली जी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि चुकी जी आप हमें एक बार फिर यहाँ पर रखे गए आर्टिफैक्ट्स है, कपड़े है पुराने जमाने के और बुद्धिज्म के इतिहास है, तो इन सभी चीजों के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: जैसे कि 1951 में मेजर बॉब खातिंग यहाँ आए, उन्होंने तवांग को इंडिया के साथ मर्ज किया, और उसके बाद 1962 का वार जो जवान इतने शहीद हो गए, और ये सब किसके लिए? क्योंकि ये हमारे जो यहाँ तवांग के जो लोकल है, यहाँ पे जो ट्राइब पाया जाता है मोनपा, उनके लिए, उनका कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उन यहाँ के मोनपा पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमारा यही मोटिव है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आए उनको दिखाए कि हमारा पहले कल्चर क्या हुआ करता था, यहाँ के लोकल जो है, यहाँ के लोग है जो क्या पहना करते थे, क्या चीज़ें यूज़ किया करते थे, और जो यहाँ के हमारे यहाँ के जो इवन लोकल से अगर वो भी यहाँ आते तो उनको अपना ट्रेडिशन को देखने को मिलता है। जो कुछ कुछ यहाँ पे ऐसा चीज़ है जो अभी सभी जगह में पाया नहीं जाता है, और कुछ ऐसा चीज़ है जो जिन्होंने यहाँ के जो अभी यूथ है उन्होंने कभी देखा नहीं होगा, तो वो सब यहाँ पे दिखाया गया। जैसे कि यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस है, यहाँ पे जैसे कि लेदर बैग है, और यहाँ पे जो कॉइन है जो पहले यूज हुआ करता था, यहाँ पे वेट मशीन है जो पहले यूज हुआ करता था, स्टोरेज बॉक्स जो अंदर से बैम्बू से बना होता है और बाहर से उसको स्किन से कवर रहता है, और यहाँ पे लोकल हाउस को 3D पेंटिंग में भी दिखाया गया है कि उन यहाँ पे लोकल घर कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे हैंडक्राफ्ट कैसे हुआ करता है, तो ये सब यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे VR भी है, वर्चुअल रियलिटी, तो ये ऐसा है कि यहाँ पे आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये ऐसा मोनेस्ट्री का व्यू कैप्चर किया है जहाँ पे टूरिस्ट इजिली नहीं पहुँच पाते या उनके टूर में वो कवर कर नहीं पाते, और कुछ ऐसा जगह है जैसे कि क्रोमतिन गोनपा जहाँ पे गाड़ी नहीं पहुंच पाता है और वहाँ पे चल के जाना पड़ता है, तो आपको यहाँ पे ही बैठ के उसको जैसे कि आप वहीं पे हो ऐसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब दिखाया गया है, और इवन यहाँ पे हमारा कल्चर जो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो सब बताया गया है, यहाँ पे लिखा गया है। और जितने भी हमारे यहाँ के 7th century से जैसे कि मेराकलामा लोटे ग्याजो, उनके बारे में मेराकलामा लोटे ग्याजो जैसे कि तवांग मोनेस्ट्री बनाए उनके बारे में बताया गया है, जैसे कि 7th century में केप कलावांपो थे उनके बारे में लिखा गया है, गुरु पद्मा समावा के बारे में लिखा गया है, बुद्धिज्म कैसे आए और बुद्धिज्म से पहले हम क्या प्रैक्टिस करते थे, और यहाँ पे हम ये सब अपना जो मोनपा का कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो सब यहाँ पे शो किया गया है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी, तो आज हम आकाशवाणी तवांग की टीम यहाँ मेजर बॉब खाटिंग की वीरता का संग्रहालय में आने के बाद, यहाँ सारी चीज़ों को देखने के बाद और आप दोनों से मिलकर बातें करने के बाद हमें ये समझ में आती है कि मेजर खाटिंग ने तवांग को भारत में शामिल करने में कितने कठिनाइयों का सामना किया और उनके कितने बड़े योगदान हमारे लिए रहे हैं, और उन्हीं के मेहनत के बदौलत आज हम अपने आप को पूरे गर्व के साथ ये कहते हैं कि हम भारत के सबसे सुंदर जिला में से एक तवांग से हैं। और

0: साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि उनके मेहनत, उनके परिश्रम, उनके योगदान को हमेशा के लिए याद रखना है और उनके सारे चीजें, उनके सारे यादें इस म्यूजियम में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे और हम तवंग वासी मेजर खाटिंग को हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे 190 माउंटेन ब्रिगेड तवंग में स्थित मेजर रालिंगनाओ बॉब खातिंग के वीरता का संग्रहालय में म्यूजियम कोऑर्डिनेटर सनली लेगुम सिंगपू से भेंट वार्ता, उनसे भेंट करता थी दर्जी ड्रामा। इसके साथ आज का कार्यक्रम महिला मंच यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:51 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म रॉयस अरिजीत सिंह और अदिति सिंह शर्मा की आवाज में। कुमार किले के इस गीत को संगीत से संवारा है अमाल मलिक ने।

अभी आपने सुना फिल्म कपूर एंड सन से गीत अरिजीत सिंह और आशीष कौर की आवाज में। शब्द रचना था डॉक्टर देवेंद्र काफिर की व संगीत था तनिष्क बागची का। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे इरशाद कामिल द्वारा शब्द फिल्म तमाशा से। मोहित चौहान की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है ए आर रहमान ने।

अभी आपने सुना फिल्म सनम रे से गीत अरमान मलिक, पलक मुच्छल और अमाल मलिक की आवाज में गीतकार थे मनोज यादव व संगीत था अमाल मलिक का। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे इरशाद कामिल द्वारा शब्द फिल्म हॉलीडे से। अरिजीत सिंह की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

अभी आपने सुना फिल्म क्वीन से गीत अमित त्रिवेदी और अरिजीत सिंह की आवाज में गीतकार थे अन्विता दत्त व संगीत था अमित त्रिवेदी का। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे आतिफ असलम की आवाज में फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी यहीं पर समाप्त हुआ। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का तावांग केंद्र है। समय शाम के 4:28 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे कलाकार रोनू मजुमदार से बांसुरी वादन। राग है जो तबले पर संगत दिया है श्री दुर्गा प्रसाद ने। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कलाकार रोनू मजुमदार से बांसुरी वादन। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 4:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित हिंदी में समाचार व 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार।

मुख्य समाचार। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने की सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ के संबंध में किए जा रहे हालिया दावों को खारिज किया। कहा कि ये दावे गलत है और चीन भारत के अंदर 60 किलोमीटर तक घुस आया है। अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ओजिंगता सिंह ने नाहरलगन में अरुणाचल प्रदेश स्टेट एपेक्स बैंक लिमिटेड के नए कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन कर सहकारिता विभाग के नए लोगों का अनावरण किया। तवांग जिले के निर्वाचन सूची पर्यवेक्षक YW रिंगो ने जिले में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समीक्षा की।

0: भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। त्रासी जोली और गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे दौर में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा की गई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी को और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद की ओर से भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के

0: इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी को और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद की ओर से भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई।
0: श्री सिंह ने कहा है कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
1: हमारी मेरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा।
0: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स से एक जहाज में चिकित्सा आपात चिकित्सा के दौरान भारतीय सेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा है कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है, जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ के संबंध में किए जा रहे हालिया दावों को खारिज किया। आईएनएस को दिए एक साक्षात्कार में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये दावा गलत है कि चीन भारत के अंदर 60 किलोमीटर तक घुस आया है। हालांकि उन्होंने माना है कि कुछ क्षेत्रों में चीनी गतिविधियां बढ़ी है और ग्रामीणों की चिंताओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश सहित अन्य जगहों से झूठे वीडियो और दावे साझा करना गलत है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी टिप्पणी की है कि अपर सुबनसिरी जिले में कथित चीनी घुसपैठ की खबरों के बीच आई है। स्थानीय लोगों द्वारा दावा किया गया है कि चीनी सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LSE पार कर ताक्सिंग सर्कल के क्षेत्रों में प्रवेश किया। अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ओजिंग तासिंग ने नाहरलगुन में अरुणाचल प्रदेश स्टेट एक्सपेक्स बैंक लिमिटेड के नए कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन कर सहकारिता विभाग के नए लोगों का अनावरण भी किया। इसके बाद मंत्री ने सहकारिता विभाग के सचिव मीतो दिर्जी, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार तथा सभी जिलों के DRCS और ARCS के साथ विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक की, जिसमें जमीन स्तर पर विभाग के सामने आ रही चुनौतियों पर चर्चा करते हुए सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई। साथ ही इन चुनौतियों के समाधान के लिए व्यवहारिक और समयबद्ध उपाय तैयार करने पर भी विचार विमर्श हुआ। बैठक में सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने, जिला स्तर पर समन्वय बढ़ाने तथा यह सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया है कि सहकारी पहलों का लाभ प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंच सके। तवांग जिले के निर्वाचन सूची पर्यवेक्षक यानी इलेक्ट्रोल रोल ऑब्जर्वर YW रिंगो ने पूरे जिले में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने SIR प्रक्रिया की प्रगति का जायजा लिया और दावों तथा आपत्तियों की तत्काल एवं समयबद्ध सुनवाई, अभिलेखों के उचित रखरखाव, पारदर्शिता तथा पुनरीक्षण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में तथ्यों पर आधारित रिपोर्टिंग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि एक स्वच्छ, समावेशी और त्रुटि रहित मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए सटीकता और पूरी सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि यही एक मजबूत लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बुनियाद है। जमीन स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए ERO ने जिले भर में गहन पुनरीक्षण अभियान को संचालित करने में निरंतर सहयोग, समर्थन और समर्पित प्रयासों के लिए भी सभी बूथ लेवल अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा है कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन

0: गली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूल पर बल देते हैं। चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में आयोजित हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वन्य उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष।
0: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 अन्य घायल हुए। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब रूस की कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ गया है। अब खेल जगत की खबरों के साथ है जागृति।
2: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनेदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिन वा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शुभशाची भट्टाचार्जी। The India-Japan Defense Minister's meeting was held in New Delhi today. Defense Minister Rajnath Singh and his Japanese counterpart Shinjiro Koizumi co-chaired the meeting. The discussions focused on deepening maritime security, making India defense technology, and expanding strategic trust. Both ministers signed a memorandum of arrangement on maritime security cooperation. In his opening remarks, Rajnath Singh said two leading democracies in Asia, India and Japan, share a profound responsibility to ensure peace, stability and prosperity. Mr. Singh highlighted that the maritime lifelines are facing growing vulnerabilities and the efforts to ensure freedom of navigation, overfight and unimpeded lawful commerce are not just an economic necessity but a strategic imperative. He said the security of the Indian Ocean and the Pacific Ocean is deeply interlinked. The minister said a close alignment between India's Mahasagar vision and Japan's free and open Indo-Pacific initiative is more important now than ever before. Mr. Koizumi expressed appreciation for the condolence to all those affected by the

0: मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज लॉन्च कर रहा है 1 अगस्त से। क्या आप इसमें भाग लेना चाहते हैं? आइए सिर्फ 1 मिनट में जानते हैं कैसे। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या एपल ऐप स्टोर से वेव्स ओटीटी ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें। अब अपने मोबाइल नंबर या उपलब्ध किसी भी साइन इन विकल्प से रजिस्टर करें और लॉग इन करें। इसके बाद माय वेव्स सेक्शन में जाएं और अपना क्रिएटर प्रोफाइल तैयार करें। अब अवेलेबल प्रोग्राम में से जेम्स ऑफ इंडिया चुनें। अपना ओरिजिनल डिजिटल कॉन्टेंट अपलोड करें, सभी आवश्यक डिटेल्स भरें और सबमिट पर क्लिक करें एंड योर एंट्री सबमिटेड सक्सेसफुली। जेम्स ऑफ इंडिया, आपकी जिले की कहानी, पूरे भारत की पहचान।
0: श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में पहले सुनिए एक जरूरी सूचना। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन अफेयर्स यानी डूडा तवांग के कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार तवांग के बेरोजगार और गरीब महिलाओं से जनरल परेड ग्राउंड व सर्किट हाउस के निकट स्थित डूडा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकान व रेस्टोरेंट के रूप में संचालित करने हेतु मासिक किराए पर देने के लिए सील्ड बंद कोटेशन आमंत्रित किए गए हैं। कोटेशन आगामी 25 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे तक डूडा तवांग के कार्यालय में जमा किए जाएंगे और उसी दिन दोपहर 3:30

मिनट पर बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोले जाएंगे। इस दर प्रस्ताव में भाग लेने के लिए नियम व शर्तें कुछ इस प्रकार हैं। कोटेशन फॉर्म आगामी 25 अगस्त 2026 से 25 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे तक उपलब्ध होंगे। आवेदन के साथ एसटी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक के पहले पन्ने का जेरोक्स कॉपी, वैध दुकान या रेस्टोरेंट का ट्रेडिंग लाइसेंस भी जमा करवाना होगा। किराए की दर प्रति कमरा प्रति माह के आधार पर देने होंगे। तवंग जिले के स्थानीय बोलीदाताओं को कमरा आवंटन में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें पहला नंबर है। बिना स्टोर के दुकान के लिए कुल 5 कमरे उपलब्ध हैं और आरक्षित किराया ₹1,000 प्रति कमरा प्रति माह तय किए गए हैं और सिक्योरिटी जमा राशि है ₹5,000 प्रति कमरा। दूसरे नंबर पर है स्टोर के साथ दुकान के लिए कुल 6 कमरे उपलब्ध हैं और आरक्षित किराया ₹1,200 प्रति कमरा प्रति माह और सिक्योरिटी जमा राशि है ₹7,000 प्रति कमरा। तीसरे नंबर पर है रेस्टोरेंट के लिए 1 कमरा उपलब्ध है और आरक्षित किराया ₹1,800 और सिक्योरिटी जमा राशि है ₹12,000। और चौथे नंबर पर है दुकान के साथ शोरूम के लिए कुल 4 कमरे उपलब्ध हैं और आरक्षित किराया है ₹1,500 प्रति कमरा प्रति माह तय किए गए हैं और सिक्योरिटी जमा राशि है ₹9,000 प्रति कमरा। बोली की दर आरक्षित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। सफल बोलीदाता के साथ 3 वर्षों की अवधि के लिए समझौता हस्ताक्षर किया जाएगा और अवधि समाप्त होने पर पुनः कोटेशन आमंत्रित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं को स्वीकृति के बाद सिक्योरिटी राशि बैंक ड्राफ्ट, चेक या नकद के रूप में जमा कराने होंगे और दुकान व रेस्टोरेंट की देखभाल, मरम्मत एवं रखरखाव का पूरा खर्च सफल बोलीदाता को उठाना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप डूडा तवांग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुआ। जरोका में अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 6:20 पर मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम शीदन लेरिम, जिसमें आप सुन सकेंगे तवंग मठ के पूर्व लोपन लामा छोनी और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत। शाम 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10 पर कार्यक्रम पोएम ऑफ द डे, जिसमें आप सुन सकेंगे मंजुल विद्या निकेतन तवांग की 5वीं कक्षा की छात्रा दिचिन रेमा से एक कविता। कविता का शीर्षक होगा नाव बनाओ नाव बनाओ। शाम 7:11 पर कार्यक्रम एक और अनेक के अंतर्गत उदित नारायण और अन्य कलाकारों की आवाज में चंद हिंदी फिल्मी गीत, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म गदर एक प्रेम कथा से उदित नारायण, अलका याग्निक और निहार एस की आवाज में गीत। फिल्म दर्कन से उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में गीत। फिल्म कभी खुशी कभी गम से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में गीत। फिल्म कहो ना प्यार है से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में गीत। फिल्म मुझसे शादी करोगे से उदित नारायण, सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में गीत। फिल्म लगान से उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह और श्रीनिवास की आवाज में गीत। और फिल्म तेरे नाम से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में गीत। आज शाम 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, 7:50 पर रीजनल न्यूज, 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म स्वदेश से ए आर रहमान की आवाज में एक गीत। आज रात्रि 8 बजे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। आज रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:00

45 मिनट पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब आप सुनिए हमारे केंद्र से कल यानी 21 अगस्त 2026 को प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात। कल शाम 5:35 पर मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम कुंसिल। शाम 6:20 पर कार्यक्रम शीदुन लेरिम। कल शाम 7:11 पर कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत मोहम्मद रफी की आवाज में चंद हिंदी फिल्मी गीत। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारी के साथ आज का कार्यक्रम जरोखा यही पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे मोनपा में।

Marimon,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोसी। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति गठित की है। ये समिति दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच करेगी। समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। अगली सुनवाई 15 सितम्बर को होगी। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्र की प्रगति, विकास और हितों से जुड़े साझा मुद्दों तथा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोष, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों में सहकारी संघवाद पर बल दिया गया। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और आपसी विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस

0: प्रदेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी लीडर मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर वाज टुडे इलेक्टेड एज द कंट्रीज 23rd प्रेसिडेंट. द 78-year-old लीडर सिक्योर 255 वोट्स इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हेल्ड एट द जातीय संसद द कंट्रीज पार्लियामेंट. He defeated former army officer Oli Ahmed, the candidate backed by the 11-party opposition alliance led by the far-right Bangladesh Jamaat-e-Islami and the country's first major student-led political party, National Citizen Party NCP, who received 88 votes. In badminton, Indian women's doubles duo of Trisha Joly and Gayatri Gopichand has stormed into the quarterfinals of the BWF World Championships in New Delhi. The Indian pair produced a commanding performance to defeat 7-seed Rin Iwanaga and Ki Nakanishi of Japan in straight games. Colombia has declared a 30-day state of economic, social and ecological emergency in regions hit by the massive earthquake on 10th of this month. The government has said the emergency measures will focus on rebuilding damaged homes and restoring businesses and essential public infrastructure, including schools and hospitals. Colombia's National Unit for Disaster Risk Management said the 7.4 magnitude earthquake had killed 319 people and left 260 missing as of this morning. And that is the end of this news bulletin.
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार. मेरी वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है. समय शाम के 7:10 हुए हैं. हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश.
2: अरुणाचल प्रदेश के क्रिएटर्स सुनो, आपके होम टाउन की वाइब एकदम नेक्स्ट लेवल है. पहाड़, कल्चर, खाना, ट्रेडिशंस और ढेर सारी स्टोरीज. अब टाइम है अपनी स्टोरी को इंडिया के स्टेज तक ले जाने का. जुड़िए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज से और बनाइए 1 से 3 मिनट की वीडियो जो बताए कि आपका जिला कितना यूनिक है. और हाँ, प्राइज भी जबरदस्त है. डिस्ट्रिक्ट विनर्स 50,000, स्टेट विनर्स 2 लाख रुपए और नेशनल विनर्स 5 लाख रुपए. बस वेव्स ओटीटी पे रजिस्टर करें, माई वेव्स पर जाकर क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं और अपनी वीडियो सबमिट करें. अरुणाचल के क्रिएटर्स, कैमरा उठाओ और अपनी स्टोरी दिखाओ.
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम पोइम ऑफ द डे. इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे मन्युल विद्या निकेतन तवंग की 5वीं कक्षा की छात्रा दिजिन ड्रेमा से एक कविता. कविता का शीर्षक है नाव बनाओ नाव बनाओ.
3: नमस्ते, मेरा नाम दिचिन रमा है. मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ. मेरा विद्यालय का नाम मन्युल विद्या निकेतन तवंग है. आज मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ और कविता का शीर्षक है नाव बनाओ नाव बनाओ. नाव बनाओ नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ. वह देखो पानी आया है, गिर गिर कर बादल छाया है. साथ समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ. भैया मेरे जल्दी आओ, पानी सचमुच खूब पड़ेगा. लंबी चौड़ी नदी धरेगा, लाकर घर में पानी धरेगा. धन्यवाद.
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना मन्युल विद्या निकेतन तवंग की 5वीं कक्षा की छात्रा दिजिन ड्रेमा से एक कविता. कविता का शीर्षक था नाव बनाओ नाव बनाओ. इसी के साथ कार्यक्रम पॉइंट ऑफ द डे यहीं पर समाप्त हुआ. ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है. समय शाम के 7:12 हुए हैं. श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम एक और अनेक. इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे उदित नारायण और अन्य कलाकारों की आवाज में चंद हिंदी फिल्मी गीत. तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत उदित नारायण, अलका याग्निक और निहार एस की आवाज में फिल्म गदर एक प्रेम कथा से. शब्द रचना है आनंद बख्शी की व संगीत है उत्तम सिंह का.

0: अभी आपने सुना फिल्म धड़कन से गीत उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में गीत गाते समीर व संगीता नदीम श्रवण का। श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले गीत से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हर जिले की अपनी एक पहचान है, हर परंपरा, हर अनसुनी कहानी, हर छिपी हुई मंजिल भारत का एक अनमोल रत्न है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जो देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स और हर जिले की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय मंच देती है। शुरुआत 2 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, अब आपकी कहानी भी पूरे देश तक पहुँच सकती है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर पर वेव्स OTT इंस्टॉल करें, खुद को रजिस्टर करें और माई वेव्स सेक्शन के प्रोग्राम्स में जाकर जेम्स ऑफ इंडिया चुनिए, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करिए और अपनी एंट्री सबमिट कर दीजिए। चुनिंदा कहानियों को मिलेगा वेव्स OTT और प्रसार भारती के राष्ट्रीय मंच पर स्थान, क्योंकि भारत की असली पहचान सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि उसके गांवों, कस्बों और जिलों की उन कहानियों में बसती है जिन्हें दुनिया तक पहुंचने का इंतजार है। अगर आपके पास अपने क्षेत्र की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, स्थानीय परंपराओं, प्रेरणादायक व्यक्तित्वों या अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लाने का जुनून है तो यही है सही अवसर। आइए अपने जिले की पहचान को एक नई उड़ान दें और सिर्फ पहचान ही नहीं, आपके हुनर को मिलेगा सम्मान भी। जिला स्तर पर 50,000 रुपए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 2,00,000 रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक के पुरस्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर क्रिएटर की अपनी कहानी, हर कहानी एक राष्ट्रीय मंच की हकदार।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम एक और अनेक के अंतर्गत उदित नारायण और अन्य कलाकारों की आवाज में चंद हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म कहो ना प्यार है से। शब्द रचना है इब्राहिम अश्क के व संगीत है राजेश रोशन का।

श्रोताओं आप सुन रहे कार्यक्रम एक और अनेक के अंतर्गत उदित नारायण और अन्य कलाकारों की आवाज में चंद हिंदी फिल्मी गीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म तेरे नाम से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। शब्द रचना है जमीर की व संगीत है हिमेश रेशमिया का।

फिल्म तेरे नाम किसी गीत के साथ कार्यक्रम एक और अनेक यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 7:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार व 7:50 पर रीजनल न्यूज।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। नई दिल्ली में आज भारत जापान रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके जापानी समकक्ष शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। वार्ता में समुद्री सुरक्षा को गहरा करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास का विस्तार करने पर विशेष जोर दिया गया। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। दोनों देशों के नेताओं ने इस वर्ष जुलाई में जारी भारत जापान संयुक्त वक्तव्य का उल्लेख करते हुए दोनों मंत्रियों ने मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लक्ष्य को साकार करने के लिए अपने नेतृत्व में रक्षा सहयोग को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों पक्षों ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए समन्वय मजबूत करने की भी पुष्टि की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। श्री खांडू ने रक्षा मंत्री को सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों और आवश्यकताओं से अवगत कराया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री खांडू ने कहा है कि वे सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने तथा वहां रह रहे लोगों के जीवन और आजीविका में सुधार के लिए पूरे सहयोग और निरंतर सहायता के आश्वासन के लिए रक्षा मंत्री के आभारी है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज नामसाई में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र, वैज्ञानिक अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का उत्सव मनाने के साथ ही अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के विकास में स्पेस एप्लीकेशन की बढ़ती प्रासंगिकता को रेखांकित करना था। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम मुख्य रूप से अन्वेषण पर केंद्रित प्रयास के विकसित होकर राष्ट्र निर्माण और निगरानी के जीवन में सुधार का एक शक्तिशाली माध्यम बन गया है। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के लिए स्पेस एप्लीकेशन का महत्व विशेष रूप से अधिक है, क्योंकि राज्य का विशाल भौगोलिक क्षेत्र, कठिन भूभाग, समृद्ध प्राकृतिक संसाधन और भूकंप, भूस्खलन तथा बाढ़ अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रति संवेदनशीलता रखता है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित अत्याधुनिक विज्ञान केंद्र श्रेणी 2 में 10 और मीटर डोम डिजिटल तारामंडल श्रेणी 2 के निर्माण स्थल का निरीक्षण भी किया। ये सुविधा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की विज्ञान संस्कृति संवर्धन योजना के तहत विकसित की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के जिले के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजनाएं तैयार करने के उद्देश्य से ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर ने आज IIT दिल्ली में प्रारंभिक कार्यशाला आयोजित की। अरुणाचल प्रदेश के परिवहन विभाग ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के परिवहन विभाग ने हाल ही में इस प्रतिष्ठित संस्थान के साथ राज्य के 3 उच्च सड़क दुर्घटना मृत्यु दर वाले जिलों ईटानगर कैपिटल रीजन, ईस्ट सियांग और नामसाई के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना तैयार करने को

बढ़कर सहयोग किया। इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा पर उच्चतम न्यायालय की समिति के निर्देशन के अनुरूप सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करने के लिए साक्ष्य आधारित और स्थान विशिष्ट उपाय विकसित करना है। परिवहन राज्य मंत्री ओजिंता सिंह कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रारंभिक कार्यशाला में राज्य सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, सड़क निर्माण एवं रखरखाव से जुड़ी एजेंसियों तथा राष्ट्र स्तर के सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ शामिल हुए। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश रीजनल सेंटर ईटानगर में आज मशरूम पर विशेष जोर देते हुए वर्गीकरण पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीएसआई एपीआरसी के विभागाध्यक्ष डॉ. कृष्णा चौलू ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर अपने विचार रखे। बीएसआई के निदेशक डॉ. कनक दास ने अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में वर्गीकरण और विशेष व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को असाधारण प्राकृतिक प्रयोगशाला बताते हुए ये बात कही। दूरदर्शन से बातचीत में डॉक्टर कनत ने भारत में वनस्पति सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए जा रहे

0: फिल्म स्वदेश किसी गीत के साथ कार्यक्रम देशभक्ति गीत यही पर समाप्त हुआ। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का तावांग केंद्र है। समय रात के 8 बज चुके हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: एक सवाल पूछूं, अगर कल कोई आपके डिस्ट्रिक्ट घूमने आए तो आप उसे सबसे पहले कहाँ ले जाएं?
2: सोचिए, मैं किसी फेमस टूरिस्ट प्लेस की बात नहीं कर रही, मैं उस जगह की बात कर रही हूँ जो सिर्फ आपकी देखा है। शायद वो आपका फेवरेट सनसेट पॉइंट, या फिर वो स्वाद वाला एड्रेस या बचपन वाली गली, या फिर कोई ऐसा मेला जिसके बारे में बाहर के लोग कम ही जानते हैं। बस यही तो आपकी कहानी है और इस कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का समय आ गया। अपने डिस्ट्रिक्ट की कहानी रिकॉर्ड कीजिए और दिखाइए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नया जेम छुपा है। तो इंतजार किस बात का? जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में पार्टिसिपेट कीजिए, 1 से 3 मिनट का वीडियो बनाइए और माई वेब पे अपलोड कीजिए और आप भी जीत सकते हैं 5 लाख, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के पास है कई कहानी।
0: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म अर्थ से जगजीत सिंह की आवाज में। शब्द रचना है कैफी आजमी की व संगीत है स्वयं जगजीत सिंह का। इस गीत की हमें फरमाइश की है आसाम से आप है हितेंद्र दास और हालिम आसाम से आप है ज्योति सुरीन।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म सौतन से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द रचना है सावन कुमार और प्रदीप कौशिक की, व संगीत है उषा खन्ना का। इस गीत की हमें फरमाइश की है मजनू कटीला दिल्ली से, आप है कमाल बलूजा, मधु बलूजा और सागर बलूजा, और सतना मध्य प्रदेश से आप है उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक।

0: बिल्कुल नहीं, तेरी कसम आऊंगा।
1: श्रोताओं आप सुन रहे हैं आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कभी कभी से। शब्द रचना है साहिर लुधियानवी की, वह संगीत है खयाम का। इस गीत की हमें फरमाइश की है लोहगर ठाकुरान वाला फिरोजपुर पंजाब से। आप है स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म लोफर्स से मोहम्मद रफी की आवाज में गीतकार हैं आनंद बख्शी व संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की हमें फरमाइश की है जलालाबाद वैसे आवे सूरज, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे फिल्म प्यार भरा दिल से, उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल की आवाज में। शब्द रचना है योगेश की व संगीत है निखिल विनय का। इस गीत की हमें फरमाइश की है पुना परा ग्रुप से आप है तेंदिन सिरिंग, दुर्जे गेसन, थुतन चंबा और कुंचो संगे की।

श्रोताओं, अभी आप आने ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूले, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा ये रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्में गीत यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आपसे थोड़ी देर में यानी 8:30 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि ठीक 9 बजे न्यूज़ @9।

0: नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात। पहले मुख्य समाचार। दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पुरुष और महिला सिंगल्स के साथ साथ मिक्स डबल्स में भी भारत की चुनौती समाप्त। एमस लेविन में इंग्लैंड के साथ ड्रॉ खेलकर भारतीय महिला हॉकी टीम विश्व चैंपियनशिप के अगले दौर में पहुंची। सेंट लुई में सिंगफील्ड कप चेस टूर्नामेंट में भारत के आर प्रज्ञानंदा दूसरे स्थान पर रहे। लुसाने डायमंड लीग में कल जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। और मलेशिया में ईस्ट बंगाल FC ने AFC महिला चैंपियंस लीग में रोवर्स FC को 12-0 से हरा कर इतिहास रचा। तो शुरुआत करते हैं बैडमिंटन के साथ। दिल्ली में BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज चौथा दिन भारत के लिए सफलताओं से ज्यादा असफलताओं से भरा रहा है। मेजबान देश के लिए दिन के पहले महिला डबल्स मैच में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने जीत के साथ शुरुआत की। इधर पुरुष डबल्स में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। पुरुष सिंगल्स और महिला सिंगल्स से भी निराशाजनक परिणाम सामने आया। सुनते हैं रिपोर्ट।
1: इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय समर्थकों की तालियों और स्टैंड से उठते शोर के बीच गायत्री और त्रिशा की जोड़ी ने कोर्ट पर कदम रखा। दोनों ये भूलकर उतरी कि उनके सामने रैंकिंग में सातवें नंबर पर मौजूद जापानी जोड़ी रिन इवानागा और की नाकानाशी हैं। पहले गेम में दोनों जोड़ियों के बीच कांटे का मुकाबला रहा। एक दूसरे से आगे निकलने की जद्दोजहद चलती रही। आखिरकार गायत्री त्रिशा ने बढ़त बनाई और पहला गेम 21-16 के अंतर से जीत लिया। इस जीत के बाद तो भारतीय जोड़ी ने ऐसी जबरदस्त लय पकड़ी कि जापानी जोड़ी मुकाबले में कहीं टिक नहीं सकी। घरेलू समर्थन के बीच गायत्री और त्रिशा ने दूसरा गेम 21-11 से जीतकर मैच को सिर्फ 44 मिनट में अपने नाम कर लिया। इस जीत के बाद दोनों ने ये तो माना कि दबाव उनके ऊपर था, लेकिन स्टैंड से मिलते समर्थन ने उनका काम आसान कर दिया।
2: गेटिंग ऑन कोर्ट डेफिनेटली देयर इज अ लिटिल प्रेशर, बट इट्स द काइंड ऑफ प्रेशर यू एंजॉय बिकॉज़ यू प्लेइंग इन दिल्ली। सो आई थिंक या इवन इन द फर्स्ट सेट वी वर डाउन 13-16, बट देन गॉट सम tips from our coaches and yeah, after that we've implemented it pretty well. So yeah, I think I'm super happy.
3: I think the crowd is so amazing. I think even when we are in the first game, when we are down also, the crowd really carried us. And I think when it's happening in the home soil, we just need to show our powerful matches and everything that they can see.
1: हालांकि मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में जीत के लय को बरकरार नहीं रख सके। 15वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी को चीन की 6वीं वरीयता प्राप्त गुओ शिनवा और चेन फांग हुई ने 16-21, 5-21 से हरा दिया। ध्रुव और तनिषा ने माना कि वो अपनी रणनीति को लागू करने से चूके और गलतियां भी हुई।
4: वेरी इक्वली डिसअपॉइंटेड दैट वी कुडंट पुट अप द बेस्ट शो स्पेशली हियर ऑन द होम ग्राउंड। इट वाज अ गुड फाइट इन द फर्स्ट सेट, बट समहाउ वी डिडंट हैव एनी कंट्रोल इन द सेकंड सेट एंड आई थिंक दे टुक एडवांटेज ऑफ दैट एंड दे प्लेड रियली वेल इन द सेकंड सेट। बट या आई थिंक वी टेक फुल रिस्पांसिबिलिटी ऑन दैट दैट वी डिडंट प्ले अप टू द मार्क टुडे एंड या वी होप दैट वी कुड हैव डन अ बेटर परफॉर्मेंस टुडे।
5: आई थिंक इट्स माय मिस्टेक, लाइक आई शुड हैव डन better there, but eventually I started making a lot of errors and which took us, they took a lead and then you are under pressure, especially me, because I think it was me who was just making very

0: mistakes, and then there's no plan if you keep making easy mistakes, and even the coach, whatever he says, it won't work. I should have done a bit better.
1: पुरुष सिंगल्स में भी भारत को बड़ा झटका लगा. टूर्नामेंट के पहले ही राउंड में वर्ल्ड नंबर वन को हराकर उलटफेर करने वाले युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी आज अपनी लय बरकरार नहीं रख सके. प्री क्वार्टर फाइनल मैच में आयुष ने 11वीं सीड इंडोनेशिया के अलवी फरहान का पहले गेम में डटकर मुकाबला तो किया, लेकिन मौकों को भुना नहीं पाना उन्हें भारी पड़ गया. पहला गेम फरहान 21-19 से जीत गए. दूसरे गेम को इंडोनेशियाई खिलाड़ी ने पूरी तरह से अपनी पकड़ में रखते हुए 21-11 से जीत लिया. इसके साथ ही मेंस सिंगल्स में भारत की चुनौती समाप्त हो गई. आयुष ने माना कि उनके पास मौके तो थे, लेकिन वो उसे भुना नहीं पाए. महिला सिंगल्स में 5 बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट पीवी सिंधु भी अपने रंग में नहीं दिखी. 9वीं सीड पीवी सिंधु ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन वही लय आगे बरकरार नहीं रख पाने के कारण पहले गेम में तीसरी सीड चीन की वांग जी यी से 11-21 से हार गई. दूसरे गेम में सिंधु ने वापसी की और मुकाबला 21-15 से जीता. तीसरे गेम में भी शुरुआती बढ़त के बाद चीन की खिलाड़ी को वापसी का मौका मिला. एक समय दोनों खिलाड़ी 17-17 की बराबरी पर थी, लेकिन कोर्ट पर दर्द से कराहती चीन खिलाड़ी ने अपना संतुलन बनाए रखते हुए लगातार 4 अंक हासिल किए और भारत की पदक की सबसे बड़ी उम्मीद सिंधु को 21-17 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. सिंधु ने माना कि उनसे अहम मौके पर कुछ गलतियां हुई.
2: शायद थोड़ा और पेशेंस रहना था मेरे साइड से, क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा था. गेम 1, गेम 2 और गेम 3 भी बहुत इक्वल चल रहा था. थोड़ा पेशेंट रहना था इज व्हाट आई फील. सैड अबाउट इट. आई शुड हैव कन्वर्टेड दैट, बट दैट्स हाउ इट इज. दैट्स हाउ स्पोर्ट इज. यू लर्न, यू लूज अ लॉट, यू विन अ लॉट. आई मीन व्हेन यू लूज यू नीड टू डील विद इट एंड बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर फ्रॉम योर मिस्टेक.
1: भारत 17 साल बाद विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है. टूर्नामेंट को लेकर दिल्ली में बैडमिंटन प्रेमियों का जोश और जुनून देखते ही बन रहा है. सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन.
3: और मेंस डबल्स में इस समय 5वीं सीड चिराग शेट्टी और 7वीं सायराज रंकी रेड्डी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप से चल रहा है. पहले गेम में भारतीय जोड़ी को कड़े संघर्ष के बाद 21-23 से हार मिली है. दूसरे गेम में भारतीय जोड़ी ताजा समाचार मिलने तक 11-8 से आगे है. अब बात हॉकी की. एमसलवीन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा. इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है. ग्रुप डी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, जबकि चीन और इंग्लैंड के साथ 2 मुकाबले ड्रॉ रहे. ग्रुप में चीन 7 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि भारत 5 अंक लेकर दूसरे स्थान पर रहा. उधर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल पाकिस्तान पर 5-3 की जीत के साथ नीदरलैंड्स और बेल्जियम की संयुक्त मेजबानी में चल रहे विश्व कप हॉकी के दूसरे दौर में जगह बना ली. लेकिन भारत के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी. सुनते हैं रिपोर्ट.
4: विश्व कप के नए प्रारूप के अनुसार पहले चरण में अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहने वाली टीम अगर दूसरे नंबर की टीम पर जीत हासिल करके आगे बढ़ती है तो दूसरे दौर में खेलने से पहले ही उसके नाम पर 3 अंक दर्ज हो जाएंगे. भारत इस मामले में नुकसान में है, क्योंकि पहले चरण में इंग्लैंड से हारने के कारण भारतीय टीम दूसरे दौर में उसके खिलाफ नहीं खेलेगी, जबकि इंग्लैंड पहले दौर के 3 अंक लेकर इस दौर में पहुंची है. इसके मायने ये हैं कि भारत को बाकी दोनों टीमों से जीतना ही होगा. भारत ने पूल डी में वेल्स को 3-1 से और पाकिस्तान को 5-3 से हराया है, जबकि इंग्लैंड से 2-4 से हार गई थी. नए प्रारूप के अंतर्गत पूल डी की दोनों शीर्ष टीम और पूल ए की 2 शीर्ष टीम से पूल ई बना है, जिसमें से पहली 2 टीम सेमीफाइनल में जाएंगी. वहीं पूल बी और सी की शीर्ष 2 टीम पूल एफ में एक दूसरे से खेलेंगी और पहले 2 स्थान की टीम अंतिम 4 में पहुंचेंगी. पूल ए में दुनिया की दूसरे नंबर की टीम नीदरलैंड शीर्ष पर है, जिसे आज देर शाम जापान से अंतिम ग्रुप मैच खेलना है. मौजूदा फॉर्म को देखते हुए नीदरलैंड का जीतना लगभग तय है, क्योंकि जापान पहले दोनों मैच हारकर दौड़ से पहले ही बाहर चुका है. वहीं दूसरे मैच में विश्व रैंकिंग में 8वें स्थान पर मौजूद अर्जेंटीना ने दूसरे दौर में जगह बना ली है. पॉइंट टेबल में फिलहाल अर्जेंटीना दूसरे स्थान पर है. दूसरे दौर में भारत का पहला मैच पेरिस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीदरलैंड से हो सकता है, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी. 3 ओलंपिक और 3 विश्व कप जीत चुकी नीदरलैंड को उसके गढ़ में हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा. इसी मैदान पर 1973 में पहली बार विश्व कप जीतने वाली नीदरलैंड ने 1990 और 1998 में फिर खिताब जीता, जबकि पिछले 4 विश्व कप में भी वो 2 बार रजत और 2 बार कांस्य पदक जीत चुकी है.

0: है। पाकिस्तान पर जीत के बावजूद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने स्वीकार किया था कि उन्हें डिफेंस में सुधार करने की जरूरत है।
1: 100% डिफेंस, क्योंकि आगे आप मिस कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज, वो चलेगा, बट जो पीछे मिस्टेक होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आई थिंक वो एक ऐसा एरिया है, नॉट डिफेंस। अगर आप अपनी 25 में आप बॉल विन कर रहे हो, मेक श्योर यू कीप द बॉल एंड गिव 100% पास। तो वही जो सिली मिस्टेक्स हैं कि हम अपनी गलती से पनिश हो रहे हैं, बट वही हम अगर अच्छा करेंगे तो आई थिंक वी रन गुड से।
0: अगर भारत अपनी गलतियों को सुधार कर मैदान पर उतरा तो सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद की जा सकती है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
2: तो विशेष हमारे साथ हैं सेमी स्टूडियो में। विशेष, क्या कहते हैं नीदरलैंड्स के खिलाफ हालिया आंकड़े?
3: भारतीय टीम जो नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलने जाएगी बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएगी, क्योंकि अभी जून में हुई FIH प्रो लीग में भारत ने नीदरलैंड को 3-2 से हराया था, जिसमें अहम भूमिका निभाई थी जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने। ये तीनों खिलाड़ी अभी भी टीम का हिस्सा हैं और अभिषेक शानदार फॉर्म में बने हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अभी दो गोल किए थे। और 1973 में भारत जब एम्स्टर्डम में खेलने के लिए उतरा था तो सिल्वर मेडल जीता था।
2: जी, ये तो बहुत रोचक आंकड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि भारतीय पुरुष टीम भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेगी अगले दौर में। अब बात कर लेते हैं शतरंज की। अमेरिका के सेंट लुई में सिंगफील्ड कप चेस टूर्नामेंट में भारत के आर प्रज्ञानंदा दूसरे स्थान पर रहे। उधर महिलाओं के किंग्स कप में चीन की ग्रैंडमास्टर तानझोई गई ने खिताब जीता। भारत की दिव्या देशमुख संयुक्त 5वें और कोनेरू हम्पी 8वें स्थान पर रही। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
4: शानदार फॉर्म में चल रहे प्रज्ञानानंद क्लासिकल मुकाबले के बाद स्थानीय खिलाड़ी वेस्ली सो के साथ 5.5 अंक लेकर संयुक्त पहले स्थान पर थे, फिर भी भारतीय खिलाड़ी के हाथ से खिताब फिसल गया। क्लासिकल बाजी ड्रॉ रहने के बाद विजेता का फैसला करने के लिए 2 रैपिड प्लेऑफ खेली गई, लेकिन दोनों ड्रॉ रही। रैपिड में भी फैसला नहीं निकलने के बाद आर्मगडन बाजी भी खेली गई, लेकिन दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला यहां भी ड्रॉ रहा। ये अलग बात है कि वेस्ली सो खेल के सहारे नहीं बल्कि नियमों के सहारे विजेता बन गए। प्रज्ञानानंदा सफेद मोहरों और वेस्ले सो काले मोहरों से खेल रहे थे, ऐसे में भारतीय खिलाड़ी के लिए जीतना जरूरी था। दूसरी तरफ अमरीकी खिलाड़ी सो के लिए ड्रॉ ही काफी था। मुकाबला ड्रॉ रहा और टाई ब्रेकर के नियम के अनुसार काले मोहरों से खेलने वाले सो चैंपियन बन गए। खिताब से चूकने के बावजूद प्रज्ञानानंदा ने ग्रैंड चेस टूर GCT फाइनल में जगह बना ली है। ग्रैंड चेस टूर का फाइनल 22 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें प्रज्ञानानंदा के साथ वेस्ली सो, फेवियानो कारुआना और विसेंट केमर होंगे। वेस्ली सो ने तीसरी बार सिंक फील्ड कप का खिताब जीता है। उन्होंने इससे पहले 2016 और 2025 में भी यही टूर्नामेंट जीता था।
2: और मुंबई में शीर्ष वरीयता प्राप्त मयंक चक्रवर्ती ने आज एशियाई जूनियर क्लासिकल चैंपियनशिप में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। भारत के विघ्नेश अद्वैत वेमुला और कजाकिस्तान के अखिलबे इमांगली के मैच ड्रॉ रहे। और एथलेटिक्स की अब बात करते हैं। लुसाने डायमंड लीग में कल जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर से आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के जरिए नीरज डायमंड लीग फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पैथिरागे ने नीरज को तगड़ी चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक ही जीत पाए थे। इसके 3 सप्ताह बाद ये दोनों खिलाड़ी फिर से एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे। 23 वर्षीय पथिरागे इस सत्र में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं। उन्होंने दोहा और रोम डायमंड लीग में जीत हासिल करने के अलावा ग्लासगो में 89.75 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक भी जीता। जून में रोम में 92.62 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ उन्होंने 90 मीटर का आंकड़ा भी पार किया था। श्रीलंकाई खिलाड़ी ने इस सत्र में अब तक जिन 9 प्रतियोगिताओं में भाग लिया है उनमें से 8 में जीत हासिल की है। वह पहले ही डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। दूसरी तरफ चोपड़ा पिछले साल सितंबर में पीठ के निचले हिस्से की चोट से परेशान रहे हैं, इसके कारण उनकी वापसी दोहा में आयोजित डायमंड लीग तक टल गई थी। ग्लासगो में वह पूरी तरह से फिट नहीं थे, लेकिन फिर भी 85.83 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीतने में सफल रहे थे।
2: तो ये थी ज्योत्सना की रिपोर्ट। एथलेटिक्स से ही एक और खबर। एशियाई खेल 2018 के स्वर्ण पदक विजेता हेपाथलीट स्वप्ना बर्मन को प्रतिबंधित पदार्थ के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। मलेशिया के कोटा किनाबालू में ईस्ट बंगाल एफसी ने आज एएफसी महिला चैंपियंस लीग 2026-27 के शुरूआती चरण में गुआम की रोवर्स एफसी को 12-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत की टीम ने इतिहास रच दिया, या किसी भी भारतीय क्लब की एशियाई प्रतियोगिता के किसी भी वर्ग में सबसे बड़ी जीत है। उधर एफसी गोवा को क्वालालंपुर में आज जारी एफसी चैलेंज लीग 2026-27 के ड्रॉ में

कुवैत की कदासिया एफसी, बांग्लादेश की फोर्टिस एफसी और तजाकिस्तान की एफसी रेगार टेजेट के साथ मुश्किल ग्रुप में रखा गया है। एक और खबर, टॉमी पॉल और जेसिका पेगुला अमेरिका में सिनसिनेटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स केंद्र में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल मैदान की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहे ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है, ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश की अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
2: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। 2 याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि तीसरी

0: याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जाँच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की है।

0: महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है।
2: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में 2 तरीके अपनाए गए हैं। मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस योजना में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
3: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: श्री कोइज़ुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है और हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
4: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एंड इट्स

0: पानी चाहिए बहुत ज्यादा। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निकलता है पानी, उसी को फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने का टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं, और जो बसेस चलते हैं एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर निकलता है।
1: भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन ICT है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाती संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अलेबाल्डो डे ला एस्प्रिला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने की 35वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुअर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी छेत्री, आकाशवाणी समाचार, कर्शियंग।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
1: एमिस्टल फेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। और दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित न्यूज एट 9। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के 9:15 हुए हैं। अब आप सुनिए हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। कल शाम 5:35 पर कार्यक्रम कुंसिल, शाम 6:20 पर कार्यक्रम शेदन लेरम और शाम 7:11 पर कार्यक्रम दर्पण। तो ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हम आपकी सेवा में कल फिर हाजिर होंगे दोपहर 2 बजे। तब तक के लिए कार्यक्रम में स्वागत श्रीमती संगीत समूह तकनीकी